मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026 प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे की 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, कीजिए प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगे। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमार स्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज

0: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। स्वागत अभिनंदन आप सभी का भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना में। श्रोताओं, जीवन की इस भागदौड़ में जब मन थकने लगता है तब भक्ति की मधुर धारा हमें ईश्वर से जोड़कर नई ऊर्जा प्रदान करती है। परमात्मा के बिना मानव जीवन भी उस पंछी के समान है जिसके पास उड़ने के लिए पंख ही ना हो। आइए सुनते हैं शर्मा बंधु के स्वर में ये भजन।

अभी आपने सुना शर्मा बंधु का ये भजन। श्रोताओं, ईश्वर के नाम का स्मरण मन को शक्ति, शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। जीवन में अनेक उलझने हैं, व्यस्तताएं हैं और मन विचलित होने लगता है, और जब भी मन विचलित हो तब प्रभु के नाम का संकीर्तन हमें आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक आनंद की अब अनुभूति कराता है। आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में ये भजन।

दुनिया से यदि नाता टूट जाए या दुनिया तुमसे रुसवा हो जाए तो उस खुदा के दर पर सजदा कर लीजिए। नबी करीम की सीरत, उनकी शिक्षाएं और इंसानियत का संदेश आज भी करोड़ों दिलों को रोशन करता है। ऐसी ही ये नात मदीने की मोहब्बत और सरकार दो आलम के प्रति समर्पण को व्यक्त करती है। आइए सुनते हैं राजा सरफराज और साथियों के स्वर में ये नात।

मानव जीवन में बहुत सी उथल पुथल रहती हैं। गुरुवाणी मानव जीवन को सत्य, प्रेम और प्रभु शक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शब्द परमात्मा के गुणों का स्मरण कराते हैं। आइए सुनते हैं हरचंद सिंह रागी के स्वर में ये शब्द।

अभी आपने सुना भाई हरजिंदर सिंह रागी के स्वर में ये शब्द। श्रोताओं, आज शनिवार है और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शनि देव जी की आरती।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की राह पर बढ़ते देख वनवासियों के द्रवित हृदय में स्नेह, श्रद्धा और सद्भाव उमड़ पड़ते हैं। ऐसे सुकुमार शरीर वाले वन के कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? इनके कोमल रक्ताप चरणों के स्पर्श से धरती वैसे ही सकुचा जाती है जैसे वनवासियों के हृदय सकुचा रहे हैं। विधाता को यदि इन्हें वनवास ही देना था तो इनकी राह में फूल क्यों नहीं बिछा दिए? यदि सृष्टिकर्ता से मांगे मिल जाए तो वनवासी उन्हें अपनी आंखों में बसा लें। श्री राम के दर्शन के लिए गांव गांव के लोग खींचे चले आते हैं। कुछ लोग ऐसे सुकुमारों को वनवास देने वाले राजा रानी को दोष देते हैं तो दूसरे राजा की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि ऐसा करके उन्होंने राह घाट के लोगों को श्री राम के दर्शनों का सुअवसर प्रदान किया। धन्य हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, धन्य है वो नगर जहां से ये आए हैं, और धन्य हैं वे पर्वत, वन, गांव और ठौर जहां ये जा रहे हैं। आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण, तपस्वी वेश में इन दोनों के बीच सीता वैसे ही सुशोभित हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया होती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। संगीत सतीश भाटिया का था और स्वर वाणी जयराम पे। मीडिया

0: 314.7 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हो रहे हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है आज का चिंतन। आज का विषय है सफलता की कुंजी।
1: हमारे ग्रंथों में एक बड़ा सुंदर मंत्र इन शब्दों में मिलता है, उठो, जागो और जब तक ध्येय की प्राप्ति ना हो प्रयत्न करते रहो। जीवन में सफलता की यही कुंजी है। बिना सक्रियता के कुछ नहीं हो सकता। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो क्या मिलेगा? दुनिया उसी को प्यार करती है, उसी को मान देती है जो मेहनत करता है और मेहनत की कमाई करके खाता है। आदमी का काम प्यारा होता है, चाम नहीं। हिमालय की चोटी पर चढ़ने के अवसर कम ही आते हैं, लेकिन हाथ के काम को कुशलता से करने का मौका तो हर पल सामने रहता है। कुछ लोग जीवन की सफलता पैसे से आंकते हैं। जिसने अधिक कमाई कर ली उसके लिए माना जाता है कि वो जिंदगी में सफल रहा है, पर धन सफलता की असली कसौटी नहीं है। धन साधन है, जीवन का साध्य नहीं हो सकता। यदि पैसा ही सब कुछ होता तो बुद्ध, महावीर, गांधी जी आदि महापुरुष क्यों गरीबी का जीवन अपनाते? आदमी को निराशा तभी होती है जब वो आशा रखता है। जो काम वो करता है उसके फल में उसकी आसक्ति रहती है। गीता में कहा गया है, काम करो, फल की इच्छा मत रखो। मेहनत कभी अकारथ नहीं जाती। फलों के पेड़ों पर फल आते ही हैं, पर फलों पर हमारी इतनी निगाह रहती है कि पेड़ लगाने के आनंद को हम भूल जाते हैं। अच्छी तरह से काम करने का अपना निराला ही उल्लास होता है। कुछ लोग कहते हैं यह भी कोई जिंदगी है कि हर पल काम करते रहो। बहुत दिन जीने के लिए आराम बहुत आवश्यक है। ऐसा कहने में एक बुनियादी दोष है। हर पल काम करने का मतलब यह नहीं है कि आदमी कभी आराम ही ना करे। इसका मतलब है आदमी कर्मठ रहे, आलस्य ना करे। सच बात यह है, निष्क्रिय जीवन से बढ़कर दूसरा अभिशाप नहीं है। जो लोग क्रियाशील रहते हैं वो काम करने का संतोष पाते हैं और अपनी प्रसन्नता से धरती का बोझ हल्का करते रहते हैं। इसके विपरीत, जो काम से बचते हैं वे स्वयं तो परेशान होते ही हैं, समाज में भी बड़ा दूषित वायुमंडल पैदा कर देते हैं। कर्ममय जीवन दूसरों पर अच्छा असर डालता है। आलसी दूसरों को आलसी बनाता है। किसी ने कहा है, उठो, दिन बीता जा रहा है और तुम सपने लेते हुए पड़े हो। दूसरे लोगों ने अपने कवच धारण कर लिए हैं और रणभूमि में चले गए हैं। सेना की पंक्ति में एक खाली जगह है जो तुम्हारी राह देख रही है। हर मनुष्य को अपना कार्य करना होता है। हर आदमी के लिए ऊंचाई पर स्थान है, लेकिन वहां पहुंचता वही है जिसके भीतर आत्मविश्वास होता है। हाथ पैरों में ताकत होती है, निगाह में ऊंचाई होती है और हृदय में सबके लिए प्रेम और सहानुभूति का सागर उमड़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि उसके ऊपर सदा निर्मल आकाश है। अगर कभी बादल घिर भी आते हैं तो वे अधिक समय तक नहीं टिकते। अपने लक्ष्य पर आंख रखकर मजबूती से बढ़ते चलना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है काव्यधारा। काव्यधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुमनेश कुमार शर्मा का काव्य पाठ।
2: कविता इसका शीर्षक है घुप अंधियारे, उसको प्रस्तुत करता हूं। घुप अंधियारे ओढ़ जिन्होंने जग को नया उजास

मगर एक वास का दीपक सुमन दहलीज पर रखना, मगर एक

भले हैरान करते हो हमें हर ओर वीराने, भले

0: के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा।
3: तमाम

0: में ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं जब कोई विशेष घटना या मानसिक आघात के कारण अभिनेता अपनी आवाज खो बैठता है या उसके पैरों की शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी वह चल फिर नहीं सकता। हम ऐसे दृश्यों को महज फिल्मी नाटक कहकर खारिज कर देते हैं, मगर हकीकत यह है कि आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। कोई मानसिक आघात लगने पर किसी व्यक्ति की आवाज चली जाती है तो किसी की आंखों की ज्योति, रोगी को बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं। मनोरोग विज्ञान में इसे मानसिक आघात से उत्पन्न बीमारी माना जाता है। इसे हिस्टीरिया का नाम दिया जाता है। हिस्टीरिया के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे आवाज का बंद हो जाना, आंखों की रोशनी का चला जाना, हाथ पैरों का काम करना बंद कर देना आदि। कभी कभी तो नासमझी में हिस्टीरिया को देवी देवताओं की सवारी आने का नाम भी दे दिया जाता है। चिकित्सा की भाषा में जब शरीर का कोई खास अंग काम करना बंद कर दे और जांच के दौरान किसी बीमारी के लक्षण न पाए जाएं, तो इस रोग को हिस्टीरिया कहा जाता है। सामान्यतः यह बीमारी किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है। छोटे बच्चों को भी हिस्टीरिया का रोगी होते देखा गया है। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में यह बीमारी अधिक होती है। दरअसल जब किसी घटना या व्यवहार से व्यक्ति का मन बहुत आहत हो जाता है और वह उससे उत्पन्न तनाव को सहन नहीं कर पाता, तो उसे मानसिक के बजाय शारीरिक रोग हो जाता है। इसे ही हिस्टीरिया कहा जाता है। हिस्टीरिया के दौरे पड़ने से रोगी की मानसिक परेशानी और घबराहट बहुत कम हो जाती है। हिस्टीरिया कई प्रकार से हो सकता है, जैसे शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर दे, कोई एक संवेदनात्मक कार्य जैसे बोलना, सुनना या दिखना बंद हो जाए, व्यक्ति को बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाकलाप में इस तरह का परिवर्तन आ जाना जिसमें लोगों को ऐसा लगे जैसे किसी ऊपरी हवा या देवी देवता का प्रकोप हो, उसकी आवाज बदल जा सकती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाना, व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठता है, उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता, कई मामलों में तो व्यक्ति अपना नाम ही बदल देता है, किसी नई जगह जाकर वह नए सिरे से जीवन शुरू कर देता है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। हिस्टीरिया रोग के साथ ऐसे बहुत से अंधविश्वास और भ्रांतियां भी जुड़ी हुई हैं, जिनकी असलियत जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि चमड़ा सुहाने से, लोहा पकड़ा देने से या झाड़ फूंक करने से हिस्टीरिया के दौरे बंद हो जाते हैं। यह महज एक अंधविश्वास है। केवल नियमित चिकित्सा से ही इस बीमारी का इलाज संभव है। हकीकत यह है कि व्यक्ति को मानसिक परेशानी के कारण ही यह रोग होता है। इसलिए जब उसे पिन चुभोई जाती है अथवा चमड़ा या प्याज सुहाया जाता है तो थोड़ी देर के लिए तो उसका ध्यान अवश्य ही बढ़ जाता है, लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। यदि इलाज में लापरवाही बढ़ती जाए तो यह बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। बहुत से लोग हिस्टीरिया के रोगी को ताने मारते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यह स्थिति उसके लिए प्राण घातक भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन से निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकता है। वास्तव में ऐसे रोगी को प्यार और सहानुभूति द्वारा अपनी परेशानी से संघर्ष करने की प्रेरणा देने की जरूरत होती है। हिस्टीरिया के रोगी के बारे में सबसे खास बात यह है कि यदि कोई उसे परेशानी है अथवा उसकी कोई जरूरत है तो संभव होने पर सबसे पहले उसे पूरा करना चाहिए। जब रोगी बहुत तनाव में हो तो उसके परिवार और नाते रिश्तेदारों द्वारा उसकी परेशानी गौर से सुनना उसके लिए रामबाण का असर कर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें।

किसान भाइयों नमस्कार। खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है कृषि रसायनों का दुष्प्रभाव और बचाव। किसान भाइयों, कृषि में फसलों की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों, फफूंद नाशकों तथा अन्य कृषि रसायनों का उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। इन रसायनों ने

0: अनुशंसित मात्रा से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगती है। मिट्टी में उपस्थित लाभकारी जीवाणु और सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं जिससे मिट्टी की संरचना खराब हो जाती है। लगातार रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी कठोर होने लगती है और उसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। परिणाम स्वरूप फसलें अधिक खाद और पानी की मांग करने लगती हैं। इससे खेती की लागत बढ़ती है और लाभ कम होता है। कृषि रसायनों का एक बड़ा दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के रूप में सामने आता है। खेतों में डाले गए रसायन वर्षा या सिंचाई के पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और भूजल तक पहुंच जाते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे प्रदूषित पानी का उपयोग मनुष्य और पशु दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। कई शोधों में पाया गया है कि कृषि रसायनों के अवशेष पीने के पानी में मिलकर अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। किसान भाइयों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग खेतों में रहने वाले लाभकारी कीटों को भी नुकसान पहुंचाता है। मधुमक्खियां, तितलियां, मकड़ियां तथा अन्य मित्र कीट फसलों के परागण और हानिकारक कीटों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव किया जाता है तो ये लाभकारी जीव भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और भविष्य में कीटों का प्रकोप और अधिक बढ़ जाता है। कई बार किसान एक ही कीटनाशक का बार बार प्रयोग करते रहते हैं। इससे कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वही दवा पहले की तरह प्रभावी नहीं रहती और कीटों को नियंत्रित करने के लिए अधिक मात्रा या नई दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। यह स्थिति किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनती है और पर्यावरणीय जोखिम को भी बढ़ाती है। किसान भाइयों, कृषि रसायनों का सबसे गंभीर प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। छिड़काव के दौरान यदि किसान उचित सुरक्षा उपाय नहीं अपनाते तो रसायन त्वचा, आंखों, नाक और मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पशुओं पर भी कृषि रसायनों का प्रभाव पड़ता है। यदि पशु हाल ही में उपचारित खेतों में चरते हैं या प्रदूषित पानी पीते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। कई बार विषाक्तता के कारण पशुओं में दूध उत्पादन कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है और गंभीर मामलों में पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। किसान भाइयों, इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए सबसे पहले किसानों को संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की नीति अपनानी चाहिए। किसी भी रसायन का उपयोग कृषि विशेषज्ञों या कृषि विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मात्रा कभी भी लाभकारी नहीं होती बल्कि नुकसान ही पहुँचाती है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल सके। किसान भाइयों, यह समझना आवश्यक है कि कृषि रसायन स्वयं में शत्रु नहीं है बल्कि उनका गलत और अत्यधिक उपयोग समस्या का कारण है। यदि वैज्ञानिक तरीके से सही मात्रा में, सही समय पर और उचित सावधानियों के साथ इनका प्रयोग किया जाए तो फसल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की खेती की बातें।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे खेती की बातें। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:15 हो रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों पर।

रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा। रात्रि 9:30 पर श्रोता सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती। सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:32 पर आपको सुनवाए जाएंगे ऋतु।

शुक्ला के गाए भजन। संध्या 6:45 पर विविधा के अंतर्गत डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प। हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा 6:05 पर, जिसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती विषय पर चर्चा होगी। साथ ही लोक गीतों व रागनियों के फरमाइशी पत्रों पर आधारित और व्हाट्सएप मैसेज पर हेलो लोग मंजरी का आनंद ले सकते हैं। कुछ श्रोताओं यानी युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा युववाणी, जिसमें क्रम रहेंगे कुछ खास है आज और गीत आपके नाम। 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए अटल भूजल योजना एवं जल क्रांति अभियान जल शक्ति मंत्रालय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है का समय रहेगा 9:25, जिसमें आज आप सुनेंगे गोपाल सिंह की गाई हुई रागिनी। 12:05 पर व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम होगा जिंदगी लाइव। 1:45 पर लोकधारा में आज आप सुनेंगे कुसुम नेगी और साथियों के स्वर में जॉन सारी लोकगीत। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 1:15, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी। साथ ही क्रम रहेंगे आधी आबादी से फिल्म संगीत भी होगा। 9:15 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल, जिसमें आज सुनेंगे वाराणसी और मऊ जिले की हलचल। कुछ ही देर बाद यानी 7:31 पर श्रोता सुनेंगे ज्ञान और मनोरंजन का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 7:18 हो रहे हैं। अब आप लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में कई प्रभावी कदम उठाए हैं। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर कल लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि हम उस नए भारत के नागरिक हैं जो अपनी विकास यात्रा की तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।
6: भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। और इसलिए देश के अंदर सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने देखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ।
4: इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट तक संचालित होने वाली परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया। श्री योगी ने कहा कि ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
7: प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ और गोरखपुर में अलग अलग विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री योगी आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 955 करोड़ की लागत से 39 विकास परियोजनाओं और गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। संशोधित समय के अनुसार परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थयात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
8: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, CCTV और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए

0: पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी क्रम में विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। नवंबर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री सीमा तय कर दी है। अब किसी पेट्रोल पंप पर प्रति वाहन या प्रति व्यक्ति 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीदा जा सकेगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि यह प्रतिबंध 90 दिनों के लिए लगाया गया है। देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का कल दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आज वाराणसी में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जसपाल राणा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा जुलाई 2026 से बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का नया स्नातक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मरिंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस कोर्स को शुरू करने का उद्देश्य भविष्य में साइबर हमलों से बचाव के लिए प्रशिक्षित टीम तैयार करना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर लखनऊ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में हुए शामिल। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को कराया है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 45 इलेक्ट्रिक और 3 हाइड्रोजन बसों का किया शुभारंभ। और गृह मंत्री अमित शाह ने की श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तीर्थयात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का दिया निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है ज्ञान, जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: सुप्रभात मित्रों, स्वागत अभिनंदन ज्ञान और मनोरंजन के कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में आपका हार्दिक स्वागत। आज का अंक लेकर मैं हाजिर हूं, आपका रेडियो साथी विश्वास द्विवेदी। आइए करते हैं अपने दिन की शुरुआत नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। आज के अंक में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी, तिथि विशेष जिसमें आज की तिथि को क्या हुआ खास जो इतिहास में दर्ज हो गया, अखबारों की सुर्खियों पर डालेंगे एक नज़र। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, संगीत का भी लेंगे आनंद। तो शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस की। ये प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। सामान्य भाषा में एल्बिनिज्म को रंगहीनता कहा जाता है। इसमें व्यक्ति के शरीर से मेलानिन नामक रंग द्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है और उसका निर्माण नहीं हो पाता। यही मेलानिन हमारी त्वचा, बालों और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों की त्वचा और बाल अपेक्षाकृत हल्के रंग के होते हैं। उन्हें दृष्टि संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि एल्बिनिज्म कोई अभिशाप नहीं है और न ही संक्रामक रोग है। ये केवल एक अनुवांशिक स्थिति है। इससे प्रभावित व्यक्ति भी समाज के अन्य लोगों की तरह समान क्षमता और प्रतिभा रखते हैं। आवश्यकता है तो केवल उचित स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर नेत्र परीक्षण, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा और समाज के सहयोग की। हम सभी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें। विद्यालयों, कार्यस्थलों और सामाजिक जीवन में उन्हें समान अवसर प्रदान किया जाए। भेदभाव और पूर्वाग्रह की जगह अपनापन और सम्मान का वातावरण बनाया जाए। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस पर हम संकल्प लें कि भ्रांतियों को दूर करेंगे और ऐसे हर व्यक्ति को उनकी विशेषताओं के साथ स्वीकार करने के लिए जागरूक करेंगे।

0: तो अभी आपने सुना ये गीत वास्तव में किसी की मुस्कुराहट देखकर जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं, उसमें अलग ही खुशी मिलती है। और अगर आपने किसी को खुशी दी है तो समझ लीजिए कि और भी बहुत ज़्यादा सुकून की बात होगी। तो श्रोताओं, जैसा कि समय चल रहा है, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अक्सर तनाव और चिड़चिड़ापन तो होने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में हम आज बात करेंगे योगासन से गर्मियों में तनाव और चिड़चिड़ेपन को करें दूर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार योगासन गर्मियों के मौसम में होने वाले तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। गर्मियों के दिनों में तेज धूप, बढ़ता तापमान और अत्यधिक पसीना शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करते हैं। थकान, बेचैनी, नींद में कमी और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना आम समस्या बन जाती है। ऐसे में योग हमें मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रदान करता है। योग केवल शरीर को तोड़ने, मरोड़ने या खींचतान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन, मस्तिष्क और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने की वैज्ञानिक पद्धति है। नियमित योग अभ्यास से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गर्मियों में वज्रासन मन को स्थिरता प्रदान करता है। शशांकासन मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है और मस्तिष्क को शांति देता है। वहीं ताड़ासन और वृक्षासन शरीर का संतुलन बनाने के साथ साथ एकाग्रता बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास मन को शांति प्रदान करते हैं। श्रोताओं, एक बात का जरूर ख्याल रखें कि गर्मियों के दिनों में योग और व्यायाम करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्के वस्त्र पहनें और प्रातःकाल या शाम के समय अभ्यास करना अधिक उपयुक्त तो माना जाता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा सा समय योग और प्राणायाम के लिए निकाल लें तो न केवल तनाव और चिड़चिड़ेपन से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और प्रसन्न जीवन की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम सब संकल्प लें कि नियमित योगाभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन का निर्माण करेंगे।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ, और श्रोताओं आज 13 जून है। 13 जून को क्या कुछ हुआ खास जो बन गया इतिहास, अब इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। श्रोताओं 13 जून सन 1774 को वो तारीख जब अमेरिका में रोडे आइलैंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपनी नौसेना को बाहरी देशों के जहाज़ों से सुरक्षित करने के लिए गुलामों के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। 13 जून सन 1940 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह को लंदन के पेटेन विले में जेल में फांसी दे दी गई। 13 जून सन 1971 को अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने वियतनाम युद्ध में अमेरिका की रणनीति से जुड़े पेंटागन पेपर्स छापने शुरू किए थे। और अब कर लेते हैं 13 जून को जन्मी कुछ खास शख्सियतों की बात। 13 जून सन 1879 को गणेश दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

हम के महान क्रांतिकारी और विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर के बड़े भाई थे और बाबा राव सावरकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। 13 जून 1909 को हुआ था EMS नंबूदिरीपाद का जन्म। ये भारत के प्रमुख कम्युनिस्ट राजनेता और विचारक थे। ये केरल के पहले मुख्यमंत्री बने और राज्य में भूमि सुधार जैसे ऐतिहासिक कार्य किए। 13 जून सन 1928 ब्लूफील्ड वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में जॉन फोर्स नैश का जन्म हुआ था। ये एक विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ थे। अर्थशास्त्र में गेम थ्योरी के लिए इन्हें सन 1994 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा बड़ा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है। 13 जून सन 2016 को मुद्रा राक्षस का निधन हुआ। ये हिंदी साहित्य में दलितों शोषितों के अधिकारों की वकालत करने वाले एक प्रमुख उपन्यासकार, आलोचक और नाटककार थे। इन्हें जन संगठनों द्वारा सिक्कों से तौलकर सम्मानित भी किया गया था। 13 जून 2012 को उस्ताद मेहदी हसन इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये महान गजल गायकों में से एक थे। शहंशाह गजल के रूप में प्रसिद्ध मेहदी हसन राजस्थान के झुंझुनू जिले के लूणा गांव में जन्मे थे। विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उन्होंने 1957 में रेडियो पाकिस्तान से एक गजल गायक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी मखमली आवाज और शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ से दुनिया भर में संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। तो ये तो थी आज 13 जून की कुछ खास घटनाएं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आज जैसा कि 13 जून है और 13 जून को जन्म हुआ था महान संगीतकार प्रेम धवन का। फिल्मी सफर सेगमेंट में आज हम उन्हीं की बात करेंगे, यानी एक बहुमुखी व्यक्तित्व की जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, प्रेम धवन की, जिनकी कलम ने देशभक्ति, प्रेम, विरह और मानवीय संवेदनाओं को शब्द दिए। वे केवल गीतकार नहीं बल्कि संगीतकार और कोरियोग्राफर और अभिनेता भी थे। 13 जून सन 1923 को अम्बाला में जन्मे प्रेम धवन ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत सन 1940 के दशक में की। वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा से जुड़े और वहीं प्रतिभा को नई दिशा मिली। बाद में उन्होंने अनेक यादगार गीत लिखे और देशभक्ति गीतों के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। प्रेम धवन ने लगभग 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा को अपनी सेवाएं दी। उनके गीतों में सहज भाषा, गहरी भावनाएं, सामाजिक सरोकार दिखाई देते हैं। प्रेम धवन ने कोरियोग्राफर के रूप में भी कार्य किया और कई फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान रही उनकी कलम, जिसने सिनेमा को अनेक अनमोल गीत दिए। फिल्म शहीद का गीत मेरा रंग दे बसंती चोला, हम हिंदुस्तानी फिल्म का गीत छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, फिल्म काबुलीवाला जो सन 1961 में आई थी, इसका गीत ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन जैसे गाने आज भी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने और नए भारत के निर्माण की प्रेरणा देते हैं। यही कारण है कि प्रेम धवन के गीत समय की सीमाओं से परे जाकर अमर हो गए। आइए सुनते हैं फिल्म काबुलीवाला का ये गीत। आवाज मन्ना डे की है, संगीत सलील चौधरी।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: इस संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ, कार्यक्रम है सूरज के साथ साथ। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है अखबारों की सुर्खियों की तरफ नजर डालने का। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं हिंदुस्तान अखबार पर। हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि प्रतिवाहन 200 लीटर की सीमा तय, 3 माह तक रहेगा प्रतिबंध फैसला, डीजल की थोक बिक्री पर रोक।

पश्चिमी एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति से मुश्किलों के बीच सरकार ने वाहनों को डीजल देने की सीमा तय की है। एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा। एक और खबर है हिंदुस्तान अखबार में, जिसे प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया गया है। सहारनपुर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, जिहादी दस्तावेज मिले। घर में ही रहता था नईम, लोगों से नहीं रखता था संपर्क। यूपी एटीएस और मध्य प्रदेश एटीएस ने सहारनपुर के ननौता में ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए संदिग्ध आतंकी नईम अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया है। राहत भरी एक और खबर हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है, नीट परीक्षार्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाने की घोषणा की है। हिंदुस्तान अखबार की ही एक और खास खबर लखनऊ से है, शहरों में गांवों को इलेक्ट्रिक बसों से जोड़ेंगे, बोले योगी। 700 से अधिक बसें, 500 बसों का संचालन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी व सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विजन दिया है। यूपी सरकार आने वाले समय में हर शहर गांव को पेट्रोल डीजल मुक्त ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा से जोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 45 इलेक्ट्रिक व 3 हाइड्रोजन बसों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। ये थी हिंदुस्तान की सुर्खियां, और अब डालते हैं अमर उजाला की तरफ एक नजर। अमरनाथ यात्रा, सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर। गृहमंत्री शाह ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। मौसम देखकर रवाना किए जाएंगे जत्थे। अमर उजाला की ही एक खास खबर जो बाजार से है, बाजार झूमा, सेंसेक्स 1695 अंक उछला। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होने के संकेतों से निवेशकों में उत्साह। जागरण की खबर है, सोमती अमावस्या और वीकेंड का ट्रैफिक प्लान लागू। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद। ये थी अखबारों की सुर्खियां, और समय की तरफ हमारा इशारा हो रहा है, यानी समय खत्म हो चुका है। सूरज के साथ साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे यानी विश्वास द्विवेदी को दीजिए अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। सवेरे के 8 बजे हैं, कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: 2000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
5: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
7: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
8: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
5: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेख

0: उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालितिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने

0: एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight, प्राइम मिनिस्टर

0: ज्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वजीर आजम अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे। यहां वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हम मनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का सातवां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वजीर आजम मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवेरा शहर नीस में आज शाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वजीर आजम मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकिद कम्युनिटी जियाफत में शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस डेस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तिराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक मस्नूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्राटिस्लावा भारतीय वजीर आजम के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वजीर आजम फीको से बातचीत करेंगे और ताउन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वजीर आजम मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्ले ग्रिनी से भी मिलेंगे। वजीर आजम का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़श्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ ताबुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्राटिस्लावा से सीएम पल्लोरसी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मरतबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमशान तकरीब में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरचार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निजाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल तक बैलिस्टिक मिसाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह निजाम मिसाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताजा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटाबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद

0: जीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज के हमले में 24 भारतीय शामिल थे, जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर 3 मल्ला पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक हो गई। इस वाकये के बाद भारत ने वॉशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉज डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाज रानी के खिलाफ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि तजारती बहरी जहाजों पर हमले बैन अवी बहरी तजारत की सेफ्टी, सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाजों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खत्े में अमनो इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमनो सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहत अपने अज़्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तशवीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त, चौकसी बढ़ाने, हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिजाइल निजाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी इको निजाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिजाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर DRDO DRDL में जदीद तरीन हथियारों के निजाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि DRDO की जानिब से तैयार करदा निजाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निजाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहिरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई ताउन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की, जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB के तकरारात से मुतालिक तरीक़ेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतही जायजा मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग के दौरान जनाब वैष्णव ने ज्यादा शफाफ, दुरुस्त और टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महकमा जाती इम्तहान की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड की जानी मुंतकली की पेशरफ का भी जायजा लिया और कहा कि तकरारात के अमल को तेज रफ्तार, मौसर और उम्मीदवारों के लिए आसान बनाने के लिए और ज्यादा टैबलेट पर मबनी इम्तिहानात मुतारिफ कराए जाने चाहिए। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिल जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफर काफी तेज रफ्तार रहा और यह सफर भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिले दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नो और अयोध्या में राम मंदिर का कयाम मोदी हुकूमत के काबिले जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म पूरब और पश्चिम से। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, हवा के हल्के हल्के झोंकों में जब मौसम अपनी खुशबू बिखेरने लगे, मन अनायास ही किसी मधुर धुन की ओर खिंच जाता है। पूरब दिशा से आती शीतल बहार अपने साथ ताजगी, उल्लास और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आती।

अभी आपने सुना फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सीता और गीता। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की। आनंद बख्शी की शब्द रचना है और धुन बनाई है RD बर्मन ने।

0: सैंडल हर पल चंदन का एहसास।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के
5: नाम। पर दादी आपके नाम।
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: दोस्ती हो अपनापन या दिल के किसी कोमल एहसास की अभिव्यक्ति, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीवन को रंगों में भर देते हैं। जब दिल अपनी भावनाओं को शब्दों में डालता चाहता है तो संगीत उसका सबसे खूबसूरत माध्यम बन जाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आदमी और इंसान। आवाजें हैं महेंद्र कपूर और साथियों की। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है रवि ने।

गोल्डन हिट्स कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई, आवाज हेमलता की है, गीत और संगीत रविंद्र चैन का। तो लीजिए पेश है ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: काशी के सांसद एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में सर्वाधिक दिनों तक लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। इस मौके पर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। सर्वाधिक समय तक जनता द्वारा चुने गए जननायक के रूप में उनका यह कार्यकाल हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आंदोलन बनाकर देश में स्वच्छता के प्रति नई चेतना पैदा की है। प्रधानमंत्री के सबसे अधिक दिनों तक देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने बताया कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिग्रा में स्थापित किए जा रहे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का लाभ भी इस वर्ष से खिलाड़ियों को मिलने लगेगा, जिससे वाराणसी और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा, जिससे खेल वातावरण को नई ऊर्जा मिलेगी। वाराणसी में 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित

0: सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधियों ने भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से गहराई से प्रभावित नजर आए। भ्रमण के दौरान अतिथियों ने मूल गणकुटी विहार, धम्मिक स्तूप तथा अन्य ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। सारनाथ की शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण ने विदेशी मेहमानों को विशेष रूप से आकर्षित किया। प्रतिनिधियों ने यहां की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से जाना। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना था।
1: ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स, तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के अगर लोगों को हम अपना कल्चर जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ भी नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश 4 में से 3 श्रेणियों में प्रथम स्थान पर रहा है। वाराणसी में आयोजित समीक्षा बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में वाराणसी देश में 11वें स्थान पर है और इसे प्रथम स्थान पर पहुंचाने के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वाराणसी इस योजना में और बेहतर प्रदर्शन करेगा। बैठक में सौर ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर भी जोर दिया गया। हनुमंत रिन्यूएबल द्वारा सोलर दीदी और सोलर सखी पहल के तहत महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की सराहना की गई। कंपनी द्वारा महिलाओं को 14,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया है। वहीं यूपी नेडा और डूडा ने प्रत्येक सोलर इंस्टॉलेशन पर सोलर दीदियों को अतिरिक्त 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना न केवल लोगों के बिजली के बिल को कम कर रही है बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन के माध्यम से आय का स्रोत भी बन रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और उनके बिजली खर्च में भी उल्लेखनीय कमी आई है। बिजली आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी 20 से 21 घंटे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आंधी और तूफान के कारण कहीं तार टूटने जैसी समस्या आती है लेकिन विभाग की टीमें तत्काल मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख है आजाद नोमानी का।
3: मऊ जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों जनपद के मधुबन की ऐतिहासिक और शहीदी धरती पर विकास की एक नई इबारत लिखी। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित एक विशाल जनसभा में 392 करोड़ से अधिक लागत की 114 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डेमो चेक, डेमो चाबी का वितरण भी किया गया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा गोद भराई एवं अन्नप्राशन का कार्य भी किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मऊ के गौरवशाली इतिहास को याद किया। जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र की ताकत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, जब आप अच्छे लोग चुनकर भेजते हैं तो एक अच्छी सरकार बनती है और जब अच्छी सरकार आती है तो अपने साथ बिना किसी भेदभाव के विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा कि जब एक सड़क, अस्पताल, पुल या बाढ़ सुरक्षा का काम होता है तो किसी भी जात को पूछकर लाभ नहीं देता। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिना किसी सिफारिश के उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की गारंटी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत यदि किसी इंसान या बटाईदार के साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार के जनप्रतिनिधि मात्र 24 घंटे के भीतर पीड़ित परिवार के घर जाकर 5 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपते हैं। श्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि
4: आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को ये सुविधा मिलेगी।
3: कार्यक्रम के बाद श्री योगी ने ताजोपुर स्थित ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए देश के वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों और ग्रामीण जनता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मऊ जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। सरकार की उपलब्धियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कर उन्हें आमजन तक पहुंचाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2029 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिनके मार्गदर्शन में विकास एवं सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। बैठक में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तिथिवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और सम्मान की भावना के अनुरूप सभी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। बैठक में जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया कि सभी कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों के व्यापक प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। मऊ में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में संचालित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने अपने आवास और वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत चयनित मुख्य कार्यक्रम स्थल बापू इंटर कॉलेज कोपागंज में पौधारोपण कर जनपद वासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला भी है। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला सैनिक बंधु की बैठक हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने कुशमौर स्थित अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो का भ्रमण कर संस्थान द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न शोध कार्यों, जैव प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों और किसानों के लिए विकसित की जा रही उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: जिले की हलचल समाप्त हुई।
6: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह के स्वर में रागिनी।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह के स्वर में रागिनी।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गोपाल सिंह के गाई हुई रागिनी। तो लीजिए पेश है एक और रागिनी।

0: इसी के साथ धरती गाती है कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है। इसमें आज हमने आपको सुनवाए गोपाल सिंह की गाई हुई रागिनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, प्रातः के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। आप अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर। तो व्हाट्सएप मैसेज है जिस पर आपको भेजना है वो नंबर है 9457078288। एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। तो देर किस बात की है, उठाइए मोबाइल और भेज दीजिए हमें व्हाट्सएप मैसेज अपनी फरमाइश का गीत लिखकर। और इधर हमने, आप देख सकते हैं कि हमने इधर आपको मैसेज भेजा, नंबर बताया और यहाँ मैसेज आने शुरू हो गए। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम शुरू करने की मुझे दीजिए अनुमति विश्वास द्विवेदी। और ये मैसेज सबसे पहले जो हमें मिला है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, लिखने वाले हैं अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से ये मैसेज मिला है हमें गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। और ये पत्र हमें मिला है
1: जी, सभी श्रोताओं को रीना राजपूत का भी नमस्कार। और ये पत्र हमारे पास तेलीपुरा रवाना शिकारपुर बिजनौर से मोहम्मद यूनुस अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अताउर रहमान अंसारी का।
0: और ये पत्र है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से, बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर, बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथव सिंह का।
1: ये पत्र हम तक पहुंचा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार का। आप हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।
0: ये मैसेज हमें मिला है शाही मार्केट सिहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रियाना, राफात चौधरी, अदीप चौधरी और कादिर चौधरी का। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से ये मैसेज है मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
1: और विश्वास जी, ये एक और पत्र मेरे हाथ में है, ये है पटेल नगर मलोट पंजाब से, लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया। कौन सा गीत विश्वास जी ये सुनना चाहते हैं?
0: ये गीत है फिल्म पाकिजा से और आवाज लता मंगेशकर की है।
1: गीत के बोल कमाल
0: अमरोही
1: अमरोही के और संगीत गुलाम मोहम्मद
0: मोहम्मद
1: का।
0: का। तो लीजिए, पेश है ये इनकी फरमाइश का गीत।

0: ये गीत था अमर अकबर एंथनी फिल्म से और इस गीत को स्वर दिए थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर के साथ साथियों ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: और इस गीत को सुनना चाहा था करताल जिला रंगारेड़ी तेलंगाना से गोपाल कानुगुला, महेश्वरी प्रवालिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश।
0: ये पत्र हमारे हाथ में है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, जानकी प्रजापति, घनश्याम, हरिशंकर, प्रशांत और रत्नेश प्रजापति का।
1: इसी गीत की फरमाइश हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मिली है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा।
0: इसी गीत को सुनना चाहा था गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले, नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें इन्होंने पत्र लिख करके भेजा था।
1: और ये मैसेज हमें मिला है
0: ये गांव टोरावाल जिला नवांशहर पंजाब से हमें लिखते हैं गगनदीप थांदी, त्रिपदा कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का। एक और पत्र हमारे हाथ में है, ये है गांव चौहलदा बागपत से, आप लिखने वाले हैं संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल।
1: ये मैसेज हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलशा, इदरीसी जीनतमान इदरीसी, नादिया शाजिया भाई, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद, हबीब अहमद इदरीसी, हाजी गफ्फार खान।
0: जी विश्वास जी, एक पत्र मेरे हाथ में है, आप हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। हमारे श्रोता हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य।
1: और ये मैसेज है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाई जान भाई, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी सुनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप।
0: बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हमें पत्र लिखते हैं आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी।
1: और मैसेज हम पढ़ रहे हैं, ये हमें मिला है इसी गीत की फरमाइश के लिए जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून।
0: और ये सब लोग कौन सा गीत सुनना चाहते हैं विश्वास जी?
1: ये गीत जो हमने अभी सुनवाया था ये इसी की
0: अमर अकबर एंथोनी का।
1: तो
0: जी, तो चलिए अब हम नाम पढ़ देते हैं अपने उन श्रोताओं के जो कि सुनना चाहते हैं ये गीत जिसको हमने लिया है
1: फिल्म कभी कभी से, आवाज किशोर कुमार की है, खयाम ने गीत लिखा है और इसकी धुन बनाई है साहिल लुधियानवी ने।
0: और इस गीत को सुनना चाहते हैं विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहेटा बरेली से।
1: और मैसेज मिला है हमें इसी गीत की फरमाइश के लिए ग्राम गदारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी, बिमला गिरी, भरत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधुगिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्य गिरी का। और
0: जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य।
1: ये मैसेज मिला है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का।
0: ओल्ड लिसनर्स ग्रुप बरका काना से मोहम्मद अफजाल।

0: इब्राहिमी, शाहीन, सुल्ताना, अफजाल, ताज और इनकी प्यारी बिटिया तस्नीम।
1: बठिंडा रोड मंडी डबाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग।
0: जतूका किशनपुर से हमें पत्र लिखते हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज।
1: शेरवानी स्कूल गंज द्वारा से हमें ये मैसेज भेजा है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर माइटर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने।
0: तो विश्वास जी सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को उनका पसंदीदा फिल्मी नगमा।
1: जी बिल्कुल।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कार्यक्रम चल रहा है गीत तुम्हारे। लगातार हमारे श्रोताओं की फरमाइश हम तक पहुंच रही है और ये फरमाइश की है एक चुलबुले से गीत की हमारे श्रोताओं ने, जिसको लिया है चालबाज फिल्म से। कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज के स्वर में आनंद बख्शी का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनना चाहते हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर।
3: संघ मित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 भोपाली जिला यवतमाल से हमें मैसेज भेजा है जयराम सिंघणकर, दिशांत कुमार सिंघणकर और अर्पिता ने।
2: भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।
3: ये मैसेज मिला है हमें मोहल्ला अफगानान शेरकोट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अब्दीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, मोहम्मद जैन, जन्नत।
2: और करूला मुरादाबाद से हमें पत्र लिखते हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान।
3: MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से ये मैसेज आया है डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिदा साहनी, झुमरी तलैया से डॉक्टर सोनम, बरकाकाना से नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम और इफ्तिकार इब्राहिम।
2: अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हमें पत्र लिखते हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद।
3: ये मैसेज हमें मिला है पद्मा टाके नेपागर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का।
2: मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये पत्र है अभिजीत गुहाणकर, राही सरिता गुहाणकर, सिद्धांत गुहाणकर, प्रिंस एकांश गुहाणकर का।
3: झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया।
2: ये पत्र है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, लिखने वाले हैं शैलेश गुहाणकर, वैशाली गुहाणकर, श्वेता, सुमित गुहाणकर और ध्वनि गुहाणकर परी।
3: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल
2: जी। ये पत्र हम तक पहुंचा है जाफराबाद जिला जालान हुन से, लिखने वाले हैं सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत।

0: राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, वर्षाताई वायल, संचित वायल, प्रथमेश देशमुख, सोहम देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख।
1: और ये मैसेज है दादा बाबू रोड गिरडी ही झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का।
0: तो लीजिए श्रोताओं, आप सभी सुनिए ये चालबाज फिल्म से ये चुलबुला सा गीत।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे और सिलसिला चल रहा है पत्रों का, गीतों का, फरमाइशों का, और हमारे श्रोता लगातार हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, पत्र भी ढेरों हमारे पास हैं। तो ये
1: रीना
0: अब जो,
1: जी अब पत्र तो वास्तव में हमारे पास बहुत है और मैसेज भी लगातार हमारे पास आ रहे हैं। अब कौन सा गीत आप सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं की फरमाइश का?
0: जी बिल्कुल, देखिए एक चुलबुला सा गीत अभी हमने सुनवाया था चालबाज फिल्म से, अब माहौल बना है तो ऐसा ही कुछ और सुनवा देते हैं। फिल्म बगावत से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में, गीत के बोल आनंद बख्शी के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और हमारे ढेरों श्रोता जिन्होंने हमें पत्र और मैसेजेस भेजे हैं उनके नाम हैं, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निमान शर्मा।
1: और ये मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश सोनू, राजपाल पंकज, काजल, सीबा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का।
0: छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा।
1: और ये मैसेज हमें मिला है इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी और डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया, गौरैया चौक अम्बाला से संदीप हंगोड़िया और राकेश हंगोड़िया, बक्सर से राज एच डी वली अंसारी।
0: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से, देखिए विश्वास जी हमारे श्रोताओं का प्यार देखिए, उन्होंने रेडियो श्रोता संघ बनाया है
1: जी, और
0: कितना अच्छा लगता
1: है,
0: लगातार हमें मैसेज भेजते हैं,
1: नियमित श्रोता हैं।
0: हाँ बिल्कुल, हमारे इतने प्यारे इतने सुधी श्रोता हमारे पास हैं, ये मन खुश हो जाता है जब इनके पत्र हमें मिलते हैं। आप हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: पुराना तालाब

0: राव से वली उल्ला अंसारी बेगम अनुश्री वली, असमानाज अंसारी बेगम प्रमिला वली, जेल रोड बक्सर से राज अंसारी शिल्पी राज और उमर राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी बेबी अंसारी और यामिनी राज, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र यादव महेंद्र और जाह्नवी यादव।
1: और जसपुर उत्तराखंड से हमें पत्र लिख करके भेजा है सियासत हुसैन सिद्दीकी ने, साथ में परिवार है नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।
0: ये मैसेज हमें मिला है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी का।
1: गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये पत्र देखिए, दूसरा हमारे दोबारा से आ गया। हमारे श्रोता इतने पत्र में लिखते हैं कि हम कब एक ही प्रोग्राम में दोबारा उनका पत्र उठा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार और इनका समस्त परिवार।
0: ये मैसेज हमें मिला है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद।
1: तो लीजिए आप सभी सुनिए फिल्म बगावत से ये गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: गीत तुम्हारे कार्यक्रम में लीजिए अब पेश है कटी पतंग फिल्म से गीत किशोर कुमार के स्वर में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने। सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोता ये खूबसूरत सा पत्र, अलग अलग रंगों से सजा, सुंदर सी हैंडराइटिंग में हम तक पहुंचा है, मेन रोड तेलहारा से। लिखने वाले हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, साहिल पोहरकार और सुजाता पोहरकार।
2: और ये मैसेज हमें मिला है इसी गीत के लिए ग्राम जुजैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नू।
1: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक, मीका बिरक।
3: फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा।
1: परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान और जमीर खान आप लिखते हैं।
3: और ये मैसेज है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेपिसिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव।
1: गोला बाजार बक्सर से हमें पत्र लिखते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित।
3: लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू,

0: दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से हम तक पत्र पहुंचा है गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडने रकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर का।
1: ये मैसेज मिला है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी।
0: यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।
1: हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन।
0: पुराना तालाब डुमराव से ये मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रामापुरी, पालीपुरी, सुनील पाठक और बीकेपुरी विनोदपुरी का पत्र हम तक पहुंचा है। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक हमें मैसेज करते हैं, तो लीजिए आप सभी सुनिए कटी पतंग फिल्म से ये गीत किशोर कुमार के स्वर में।

0: ओली जी, अब वक्त है आज के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, जिसे लिया है हमने फिल्म करण अर्जुन से।
1: और इस गीत को सुनना चाहा है
0: जी
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर, और ये हैं जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार बेगम साहिबा महबूब, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अल शिफा परवीन।
0: जी जिला अमरोहा नई बस्ती।

फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी। तो लीजिए हमारे श्रोता सुने अपनी पसंद का ये गीत फिल्म करण अर्जुन से कुमार शानू और अलका याग्निक के स्वर में।

0: विश्वास जी धीरे धीरे करते समय कार्यक्रम का हो चुका है
1: बिल्कुल
0: समाप्त।
1: रीना जी वास्तव में पता नहीं चलता जब हम प्रोग्राम करते हैं
0: तो ले ली जाए अपने श्रोताओं से इजाजत। आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की रीना राजपूत
1: और मुझे विश्वास द्विवेदी को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार, नमस्कार।

दिल से प्यार, और लीजिए यही प्यार निभाने की जो परंपरा है, बढ़ाते हैं इसको आगे। बहुत सारे गीत आपके लिए लेकर के आ गए हैं हम चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। ये पहला गीत जब वी मेट फिल्म से उस्ताद राशिद खान के स्वर में इशाद कामिल का गीत, संगीत संदेश शांडिल्य का।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए बंटी और बबली फिल्म से गीत सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में। गुलजार के गीत को संगीत से रोशन किया है शंकर एहसान और लॉय ने।

बोल बचन, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं। हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल के स्वर में, शब्बीर अहमद का गीत, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

लीजिए अब सुनिए शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान को दोस्ताना फिल्म के लिए। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का।

आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वेलकम से। गीत के बोल आनंदराज आनंद, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के स्वर में। लीजिए सुनिए ये गीत।

ब्रह्मास्त्र यह फिल्म का नाम, जिसका गीत अब आप सुनने जा रहे हैं अरिजीत सिंह के स्वर में। अमिताभ भट्टाचार्य का गीत, संगीत प्रीतम का।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को हुई एक बार फिर आशिकी 2 फिल्म के लिए इस गीत को धुन दी है मिथुन ने।

रब ने बना दी जोड़ी। सुखविंदर सिंह को आई सुनते हैं इस फिल्म में। जयदीप साहनी का गीत, संगीत निर्देशन सलीम सुलेमान का।

कलयुग, यह है फिल्म का नाम। स्वर राहत फतेह अली खां के, गीत अनीस रजा का और संगीत अनु मलिक का। लीजिए सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान को कलयुग फिल्म के लिए। कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म दिल से, स्वर सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के। इस गीत के शब्द हैं गुलजार के और संगीत निर्देशन ए आर रहमान का है।

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म दिल से के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको आज के शेष कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी 12:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। आज इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय रहेगा रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर। आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेज सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। विषय रहेगा रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज के आकर्षण होंगे आधी आबादी से ऐसा देश है मेरा, फिल्म संगीत और चलते चलते। जौनसारी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोकधारा कार्यक्रम में दिन में 1:45 पर। और भजन आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के अंतर्गत शाम 7:32 पर। एक ही गीतकार कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 पर। आज आपको सुनवाएंगे वरुण ग्रोवर की कलम से निकले गीत। युवावाणी कार्यक्रम में आज के आकर्षण होंगे कुछ खास है आज, गीत आपके नाम, बूस्टर्स और फिल्म संगीत। शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। आज उनके लिए होगा लोकगीतों व रागनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, ये पूर्व प्रसारित वार्ता आपको सुनवाएंगे विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह।

रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती और रात्रि 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। 12:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जिंदगी लाइफ।

आकाशवाणी नजीब बाबा से विशेष कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आप सभी सम्मानित श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना राजपूत। श्रोताओं, चलती का नाम जिंदगी है और इस जिंदगी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे भीतर बहती रक्त की धारा सबसे अनमोल है। इसीलिए आज का हमारा विशेष विषय है रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर। श्रोता मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, अपना खून देकर देखो, किसी की जिंदगी बन कर देखो, ये दुनिया हसीन लगेगी, तुम किसी की जिंदगी बनकर तो देखो। जी हाँ श्रोता मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना होगा, लेकिन सच तो ये है कि हम अपने महज 10 से 15 मिनट के समय में और एक यूनिट रक्त में किसी मरते हुए इंसान को नया जीवन दे सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हमने आज ये विशेष विषय रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर चुना है। तो चलिए, हमें आप लिख करके भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेजेस। जी हाँ, विषय फिर से एक बार बता देती हूँ, रक्तदान एक कदम मानवता की ओर विषय है। नंबर हमारे पुराने श्रोता सभी जानते हैं, जो नए जुड़े हैं उनको हम बता देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस लिख करके भेजिए, हम आपके मैसेजेस को पढ़कर सुनाएंगे और पहुंचाएंगे उसको सभी श्रोताओं तक। विषय एक बार फिर से बता देती हूँ, रक्तदान एक कदम मानवता की ओर। तो जब तक आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, तब तक एक खूबसूरत गीत आपके लिए है।

www.radiomaryadevi.in. कार्यक्रम चल रहा है जिंदगी लाइव और आज चर्चा का विषय है रक्तदान एक कदम मानवता की ओर। हमारा फोन नंबर है 9457078288। मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और जिन श्रोताओं को अभी तक मोबाइल नंबर नहीं पता था उनको हमने बता दिया है। आप भी अपनी मैसेजेस लिख करके हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं आपके मन में क्या है इस विषय को लेकर के, आप क्या सोचते हैं कैसा होना चाहिए। एक मैसेज हम तक पहुंचा है, आप हैं ग्राम गधारोना से मदन गिरी, लिखते हैं 14 जून को हम विश्व रक्तदान दिवस मना रहे हैं। आपने अच्छा विषय चुना है, हर स्वस्थ व्यक्ति को 65 की उम्र तक रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने में कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान करने में कोई ऐसी बीमारी है जो रक्तदान करने से नहीं होती। रक्तदान करने से हम किसी की जान बचा सकते हैं और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रक्तदान करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात हमें लिख करके भेजी है मदन गिरी जी ने। रक्तदान करने से, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसी भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी या हमें कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है। विज्ञान भी कहता है रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि नया खून बनने से हमारा स्वास्थ्य और बेहतर होता है। ये एक वैज्ञानिक सच ही नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म भी है। श्रोता मित्रों और मैसेजेस देखते हैं। रक्तदान महादान होता है। अभी 15 दिन पहले हमारी सासू माँ का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन से पहले हमारी सासू माँ को रक्त यानी खून की ज़रूरत पड़ी। हमारी कुछ तबीयत खराब होने के कारण हम उन्हें खून नहीं दे पाए। फिर हमारी मौसी जी के लड़के ने उन्हें खून दिया। अब वो दोनों ठीक हैं। ऑपरेशन भी सफल हुआ और सभी को बड़ी खुशी हुई। ये मैसेज हमें लिख करके भेजा है ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी और मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह ने। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए रक्तदान उन्होंने किया तो अब दोनों ही स्वस्थ हैं। और जैसे कि हमने अभी कहा कि जो भ्रांति है कि रक्तदान करने से हमें कोई कमजोरी हो जाएगी या कोई बीमारी हो जाएगी, ये सिर्फ भ्रांति ही है। सच इसका उल्टा है। रक्तदान करने से जो स्वच्छ खून है वो और तेजी से हमारे शरीर के अंदर बनता है। एक अगला मैसेज राजेश भारद्वाज बालासोड़ कोटद्वार उत्तराखंड से हमें लिखते हैं। स्वरचित कविता इन्होंने लिख करके भेजी है, आओ एक अभियान चलाएं, रक्तदान पर ज्ञान बढ़ाएं, मानवता की सेवा में हम रक्तदान का दीप जलाएं। रक्त दुर्घटना में बह जाता है, आप लिखना चाह रहे हैं रक्त दुर्घटना में बह जाता है, प्राण संकट में आ जाता है, ऐसे में यदि हो रक्तदान तो जीवन किसी का बच जाता है। गर्भावस्था की जटिल स्थिति में, शल्य चिकित्सा की मजबूरी में जब रक्त रोगी को मिल जाता है तो संकट प्राण का टल जाता है। रक्तदान जब अभिलाषित हो, न्यून 18 बसंती जीवन हो, 45 किलो काया और 65 बसंत जब तक हो। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की कि यदि आपकी उम्र 65 साल से कम है तब आप कर सकते हैं, और यदि 45 किलो वजन से आप ऊपर हैं तो भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी कविता लिखी आगे।

लिखते हैं, खून 12.5 हो, काया गंभीर रोग मुक्त हो, मन में परमार्थ समाया हो, रक्तदान तब सार्थक हो। देखिए, परमार्थ तो मन में समाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम सोच पाएंगे कि हम रक्त दान करें। क्योंकि एक छोटी सी अगर हमारे शरीर में कोई चोट भी लग जाती है ना, और थोड़ा भी खून निकल जाता है, तो साइकोलॉजिकली हमें कमज़ोरी महसूस होनी शुरू हो जाती है। चोट लग गई, खून बह गया, तो हम अपना मन बनाएं कि हमें रक्तदान करना है। रक्तदान करना हमारे खुद के लिए भी बहुत अच्छा है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा वो किसी जीवनदायिनी स्थिति के लिए है, जहाँ पर हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी कविता आपने लिख करके भेजी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, रफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर चौधरी। लिखते हैं, वाकई जिंदगी में किसी की जान बचा दो, वह तमाम जिंदगी दुआएं देता रहेगा। मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार खून दिया है, एक हमारे दोस्त की बीवी को ज़रूरत पड़ी थी तब दिया था। एक दफ़ा दिल्ली में एक मजदूर था, उसकी पेट की एक तह फट गई थी, उसकी जान बच गई थी, मैंने उसको भी खून दिया था। खून देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 2-4 दिन फल फ्रूट खा लेने चाहिए, मौसमी जूस। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक नियम है हमारे शरीर का, कि जब हमारे शरीर से खून निकलता है तो जो नया खून बनने की स्पीड तेज़ हो जाती है, और उस पर अगर हमने कुछ हेल्दी खा लिया तो वो स्पीड और तेज़ हो जाती है, और एक अच्छा, बहुत अच्छा रक्त नया हमारे शरीर के अंदर बनने लगता है। मैसेजेस और भी हमारे पास आ रहे हैं, एक गीत आपको सुनवाएंगे, फिर से शुरू करेंगे मैसेजेस का सिलसिला। तो श्रोताओं, यदि आपने अभी तक हमें मैसेज नहीं लिख करके भेजा है, तो फिर से बता देती हूँ, आज हमारा विषय है रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर। और हमारा नंबर है 9457078288। फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9457078288। इस नंबर पर आप भी इस विषय से संबंधित अपने विचार हमें लिख करके भेजिए।

0: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और आज जिंदगी लाइव में हमारा विषय है, विशेष विषय है, रक्तदान एक कदम मानवता की ओर। अपने श्रोताओं के मैसेजेस हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचा है, विलेज एंड पोस्ट राहुल नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, राघव चौहान का लिखते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार, रक्तदान सभी को करना चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार डायलिसिस पर थे, तब उनको रिश्तेदार मिलने वाले समय समय पर रक्तदान किया करते थे, हमने भी किया, तब हमने जाना इसका क्या महत्व है। ऐसा करने से किसी को जीवन मिलता है, इससे कोई कमजोरी या बीमारी नहीं आती, इसलिए कहा गया है रक्तदान महादान। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए ये कुछ वो बातें हमारे श्रोता लिख करके भेज रहे हैं जो उनके जीवन में घटी हैं। तो जीवन में जो बात घट रही है उसको उन्होंने महसूस किया है और तब वो उन्होंने ये लिखा है। इसका मतलब है कि ये बात परम सत्य है। तो जिन हमारे श्रोताओं को अगर कहीं मन में ये दुविधा है कि रक्तदान करें या ना करें, क्या

करें, कहीं रक्तदान करने से कमजोरी तो नहीं आ जाएगी, मेरा खून निकल जाएगा, मैं काम कैसे करूंगा या करूंगी। तो ऐसा नहीं है, रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई कमजोरी शरीर में नहीं आती है। एक और मैसेज हम तक पहुंचा है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून लिखते हैं, किसी की मदद करते वक्त उसके चेहरे की ओर मत देखें, हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें देखकर आप में गुरूर आ जाए। देखिए, ये तो बात प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी समय किसी के पास भी आ सकता है। आज यदि सामने वाला मदद की स्थिति में है, तो कल वहाँ हम भी हो सकते हैं। तो ये सोच करके, खुले दिल से हम अपने लिए, अपने समाज के लिए जो कर सकते हैं, वो हमें करना ही चाहिए। बातें और करेंगे, मैसेजेस भेजिए आप हमें, और तब तक एक गीत आपके लिए।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र और आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कम्पियर्ड कार्यक्रम जिंदगी लाइव। और आज का विशेष विषय है रक्तदान, एक कदम मानवता की ओर। लगातार हमारे श्रोताओं के मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, इसी क्रम में ये मैसेज हम तक पहुंचा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। लिखने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अब्रार हुसैन अंसारी। आप लिखते हैं, रक्तदान को महादान कहा जाता है। हर व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं होती, ना ही कोई किसी प्रकार की कमजोरी आती है। अगर किसी को रक्त की आवश्यकता पड़े तो हमें रक्तदान कर देना चाहिए। आपकी ये समझदारी किसी की जान बचा सकती है। बहुत उम्दा बात आपने लिख करके भेजी है। और देखिए, आज हमें लगता है कि आकाशवाणी के इस मंच से हम सब ये संकल्प लें कि हम स्वयं साल में कम से कम एक बार रक्तदान करेंगे और अपने मित्रों और परिवार को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि रक्तदान जरूरी है, क्यों हमें रक्तदान करना चाहिए, इससे हम किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। ये सब बातें अगर हम अपने उन मित्रों और परिवार वालों को बताएंगे जिनको कि ये ज्ञात नहीं है, तो उनका मन भी बनेगा रक्तदान करने के लिए और वो भी प्रेरित होंगे रक्तदान किया जाए इसलिए। और ये तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा दिया हुआ रक्त किसी के घर का बुझता हुआ चिराग रोशन कर सकता है। इससे बड़ा शुभकामनाएं किसी के दिल से और कब निकलेंगी। तो सोचिए, यदि किसी के घर का बुझता हुआ चिराग आपने बचा लिया तो आपको कितनी ढेरों ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, दुआएं हमारे जीवन में क्या काम करती हैं, ये तो हमें सोचने की जरूरत नहीं। तो श्रोताओं, मैसेजेस का सिलसिला जारी रखिए। एक गीत के बाद हम लौटते हैं और फिर से हम इसी क्रम को जारी रखेंगे।

जिंदगी लाइव कार्यक्रम में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दान की जो किसी को नया जीवन दे सकता है। जी हाँ, रक्तदान, जिसे महादान कहते हैं, जो कि है एक कदम मानवता की ओर। एक मैसेज हम तक पहुंचा है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आप हैं नगीना से अनिल विनोचा जी, आप लिखते हैं, आपको सादर नमस्कार जी। नमस्कार, लिखते हैं आज का टॉपिक तो बहुत ही महान और मानव होने की मिसाल है, रक्तदान एक महा मानवता की ओर। लिख रहे हैं कि कुछ लिखता हूँ जी। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। दान करना हमारी संस्कृति भी, चाहे किसी भी रूप में हम किसी से किसी के काम आए, चाहे शारीरिक हेल्प करें या आर्थिक मदद करें। रक्तदान करना जीवन दान करने के बराबर है। ये ईश्वर के रूप को इंसान में देखने का एक अनुपम रूप है। लेकिन आज इंसान लोगों को खून भी चूस रहे हैं। इंसान को मुस्कान पहुंचाना इंसान को विरोधाभासी बनाता है। हम ये भी संकल्प करें कि हम एक दूसरे को किसी भी राह से हानि ना पहुंचाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंह में राम और बगल में छुरी। देखिए, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। जो हम कहते हैं वो हमारे कर्मों में भी दिखना चाहिए, तब सार्थकता है उस बात की। हम कह रहे हैं कि रक्तदान एक महादान है, रक्तदान हमें करना चाहिए, रक्तदान किसी के जीवन को बचा सकता है, तो वो महज कहने के लिए नहीं होना चाहिए। हमें साल में कम से कम एक दो बार रक्तदान करना चाहिए। अब बात ये भी है कि रक्तदान हम क्यों करें, भाई क्या होता है हम रक्तदान करें तो इसका जवाब ये है कि हमारा दिया हुआ रक्त किसी दुर्घटना पीड़ित या किसी थैलेसीमिया के मरीज या प्रसव के दौरान किसी माँ की जान को बचा सकता है। और रक्तदान करने से खुद हमें भी फायदा है। अब वो क्या है? रक्तदान करने से शरीर में नया खून बनता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो दूरी मिटाएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं, आगे आएं और रक्तदान करके किसी की जान बचाएं। एक गीत आपके लिए, फिर से लौटते हैं आपके मैसेजेस के बाद।

0: आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो
1: कार्यक्रम चल रहा है जिंदगी लाइव, और आज का हमारा विषय आप सभी जानते हैं, एक बार फिर से हम बताएंगे, रक्तदान एक कदम मानवता की ओर। और हम सब जानते हैं, हमारे श्रोताओं ने कितने सारे मैसेजेस हम तक लिखकर भेजे हैं अपने, जिन्होंने रक्तदान किया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी हमें लिख कर के भेजा कि हमने रक्तदान किया तो किसी की जान बची। भाई जीवन रक्षक है रक्तदान, तभी तो महादान कहा जाता है इसको। मात्र एक यूनिट रक्त और 3 अलग अलग लोगों की जान बच सकती है। श्रोताओं, यूं तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प आज भी मौजूद नहीं है। ये केवल एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है। तो यहाँ पर विज्ञान के साथ साथ हमें भी समाज के, अपने लिए, अपनों के लिए ये कदम खुद से बढ़ा करके आगे चलना है। रक्तदान है सबसे बड़ा कर्म, यही है इंसान का सच्चा धर्म। देखिए, वैसे तो हम हर 3 महीने में एक सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, निरोगी है, तो हम हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी शारीरिक क्षमता होती है, हम उसके हिसाब से ये जांचें परखें कि हम कितना रक्तदान करने में सक्षम हैं, तो आप उसके हिसाब से साल में 1-2 बार तो हम सभी को रक्तदान करना ही चाहिए। तो आइए झिझक छोड़

हैं और बढ़ते हैं किसी के बुझते हुए जीवन को, दीपक को एक नया उजाला देने की ओर, यानी रक्तदान की ओर। और आज ही अपने नज़दीकी सरकारी ब्लड बैंक या अधिकृत जहाँ पर कैंप लगता है रक्तदान के लिए, वहाँ जाकर के या ब्लड बैंक में जाकर के हम रक्तदान कर सकते हैं और हम भी एक गर्व महसूस कर सकते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया अपने इस जीवन में। हम उस श्रृंखला में जुड़े जहाँ पर हम शामिल हो गए किसी के जीवन को बचाने की शुभकामनाओं में। एक गीत चलते चलते आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इस उम्मीद के साथ कि रक्तदान की इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे, रक्तदान करेंगे और रक्तदान के लिए हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को प्रेरित भी करेंगे। आज का कार्यक्रम संपन्न करने की रीना राजपूत अब अनुमति चाहती है। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में

0: श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi leaves for France and Slovakia on a 6-day visit. Mr. Modi will participate in the G7 summit on the 16th and 17th of this month. In his departure statement, Mr. Modi emphasized that India's presence at the G7 reflects the trust India's partners place in the country's growing global profile. He said this is the 8th consecutive G7 summit to which India has been invited. Mr. Modi also highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic

0: उत्तराखंड में पहाड़ों पर हुई बारिश की वजह से पीलीभीत जिले में शारदा नदी की आबी सतह में काफी इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:15 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:15 हो रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को हमारा नमस्कार। साथ ही आप सभी का स्वागत अभिनंदन महिला जगत के आज के इस अंक में। बहनों, आज वीकेंड का दिन यानी कि आज छुट्टी का दिन है और आज महीने का दूसरा शनिवार है और महीने के दूसरे शनिवार को हमारे यहाँ से मासिक कार्यक्रम होता है ऐसा देश है मेरा, जिसमें किसी एक जगह की सैर या एक जगह के बारे में आपको हम बताते हैं। तो आज एक कार्यक्रम में आपका हम भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं क्योंकि आज का कार्यक्रम मनोरंजन से भरपूर है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम आज की बात के साथ ही करते हैं। बहनों, आज के वर्तमान समय में हम महिलाएं हों या किशोरियां, उनके प्रति जो शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह की खबरें हम आए दिन देखते और सुनते रहते हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा सीखना आज की आवश्यकता है और आत्मरक्षा के गुण सीखना ये केवल एक कौशल नहीं है, ये आत्म सुरक्षा के साथ हमें भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है, यानी कि दिमागी तौर से भी ये हमको मजबूत करता है। जब हमें लगता है कि हम स्ट्रांग हैं, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी मजबूत होते हैं, तो किसी भी बुरे समय का हम सामना कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी बेटियों को या जो महिलाएँ हैं उन्हें बचपन से ही जो बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है उसका आना बहुत ज़रूरी है। आत्मरक्षा का मतलब अब लड़ाई करना भी नहीं है बल्कि मुश्किल समय और जो विपरीत परिस्थिति है उससे खुद को सुरक्षित निकालना है। अब इसके लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को अपना सकते हैं, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में आपातकालीन नंबर ज़रूर सेव करके रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस नंबर से हम तुरंत मदद ले सकें। इसके साथ ही अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी हम सतर्क रहें, हम समझ सकें कि हमारे आसपास जो होने वाली गतिविधियाँ हैं वो हमारे लिए विपरीत तो नहीं हैं। साथ ही नियमित रूप से आत्मरक्षा का अभ्यास भी करते रहें, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते रहें जिससे कि समय आने पर उस अभ्यास को हम अमल में ला सकें। हर महिला और किशोरी को अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम बुनियादी सेल्फ डिफेंस तकनीकों का प्रशिक्षण अवश्य ही लेना चाहिए क्योंकि ये जो तकनीकें होती हैं, जूडो करांटो हो और इस तरह के आजकल ताइकोंडो, बहुत सारी तकनीक है जो सिखाई जाती हैं बचपन से ही। तभी तो कहते हैं ना कि बेटियों को सिर्फ हम पेंटिंग है, नाचना गाना, इसके साथ साथ अपने को सुरक्षित रखने के जो गुण हैं वो भी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि आत्मरक्षा का ज्ञान डर को नहीं बल्कि आत्मविश्वास को बढ़ाता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है। और अपनी इस चर्चा के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ संदेशों के साथ।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम
1: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।

0: ऐसा नहीं हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या?
0: RBI कहता है।
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे जाति दीदी बनकर बनी है परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: इन संदेशों के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं बहनों, क्रम आधी आबादी से में, जिसमें आज हम याद करेंगे हिंदी फिल्म संगीत की उस मधुर, कोमल और दिल छू लेने वाली आवाज को जिसने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पे राज किया। और अभी हाल ही में 31 मई 2026 को वो इस संसार को अलविदा कह गई, लेकिन सुरों की अनमोल विरासत वो अपने पीछे छोड़ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। तो आज आधी आबादी क्रम में उनकी संगीत यात्रा के सुनहरे पड़ावों से रूबरू होते हैं।

सुमन कल्याणपुर एक ऐसी गायिका जिन्होंने हिंदी फिल्मों को न जाने कितने अमर और सदाबहार गीत दिए और अपने इन मधुर गीतों के माध्यम से दशकों तक हम सब के दिलों में राज किया। 28 जनवरी 1937 को ढाका में जन्मी सुमन हिमाडी, जो आगे चलकर सुमन कल्याणपुर के नाम से जानी गई। बचपन से ही उन्हें चित्रकला और संगीत दोनों में ही बेहद रुचि थी। चित्रकला को लेकर वो बेहद संजीदा भी थी, लेकिन एक दिन उनके पिता के मित्र ने जब सुमन जी की आवाज सुनी तो उनकी आवाज के हुनर को पहचान गए और उन्होंने सुमन जी के पिता से उन्हें संगीत की शिक्षा देने को कहा। पिता ने भी सुमन जी को शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त करवाया और फिर जब सुमन जी ने मंच पे गाया तो सराहना भी मिली और अवसर भी। उनकी मधुर आवाज और संगीत के प्रति समर्पण ने उन्हें फिल्म संगीत की दुनिया तक पहुंचा दिया।

सुमन कल्याणपुर का फिल्म मंगू और दरवाजा से फिल्मी गीतों का ऐसा सफर शुरू हुआ जो दशकों तक रुका ही नहीं। सन 1998 में रामानंद कल्याणपुर से उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद सुमन हेमाडी सुमन कल्याणपुर के नाम से जानी जाने लगी। सुमन कल्याणपुर ने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब हिंदी फिल्म संगीत में कई दिग्गज गायिकाएं सक्रिय थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सरल मधुर और भावपूर्ण गायकी के दम पे श्रोताओं के दिलों में जगह बनाई। उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत थी भावनाओं को सहजता से व्यक्त करना। मुकेश मन्ना डे और रफी साहब के साथ उन्होंने यादगार युगल गीत गाए। उनके संगीत करियर में उन्होंने सबसे अधिक 130 से भी अधिक गाने मोहम्मद रफी साहब के साथ गाए। 1960 और

0: रहेंगे।
1: सुमन कल्याणपुर के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि सुनने वाले सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में समानता महसूस करते, लेकिन सुमन जी ने इस बात को भी बड़ी सहजता से लिया। वो कहती कि वो लता मंगेशकर की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं। इसके बावजूद सुमन जी ने हमेशा अपनी अलग शैली और पहचान बनाए रखी। उनकी गायकी की सहजता सीधे दिल तक पहुँचती है। सुमन कल्याणपुर की गायकी न केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित रही, बल्कि उन्होंने 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी 3000 से अधिक फिल्मी और नॉन फिल्मी गाने गाए। वो विदेशों में शो करने वाली हिंदी फिल्मों की पहली गायिका रही हैं। उन्हें भारतीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए साल 2023 में प्रतिष्ठित सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सुमन कल्याणपुर के गीतों में विरह, संगीत और संवेदनाओं के अनेक रंग सुनाई सुमन कल्याणपुर के गीतों में विरह, खुशी और संवेदनाओं के अनेक रंग सुनाई देते हैं। उनकी गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई और फिल्म संगीत की सरलता का सुंदर मिलन था। सुमन कल्याणपुर केवल एक गायिका ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत की एक अमूल्य धरोहर थी। सुमन जी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सहजता। उन्होंने कभी लोकप्रियता की दौड़ में स्वयं को नहीं खोया। उनकी गायकी सिखाती है कि सच्ची कला शोर नहीं करती, बल्कि अपनी गुणवत्ता से लोगों के दिलों में जगह बनाती है। आज जब वर्तमान समय में संगीत के स्वरूप में लगातार बदलाव आ रहे हैं, तब सुमन कल्याणपुर जैसे कलाकारों की विरासत हमें याद दिलाती है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संवेदनाओं की अभिव्यक्ति भी है। उनके गीत आने वाली पीढ़ियों को भी सुर, साधना और समर्पण का संदेश देते रहेंगे।

बहनों, ये था आधी आबादी, जिसमें कि आज हमने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी को। और अब चलते हैं हमारे मासिक क्रम ऐसा देश है मेरा में।

ऐसा देश है मेरा में आज आपको लेकर चलेंगे उस पावन धरा पर जहां हर गली में भक्ति की सुगंध है, हर कण में प्रेम का वास और जहां आज भी कान्हा की बांसुरी की मधुर तान सुनाई देने का विश्वास किया जाता है, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति संस्कृति और आध्यात्मिक शांति की इस अनोखी यात्रा को।

की नादान अटखेलियों से लेकर यौवन की दिव्य लीलाओं तक ऐसी कई कहानियां हैं जो भक्तों और पर्यटकों को न केवल देश के कोने कोने वरन विदेशों से भी भारत खींच लाती हैं। बात भगवान श्री कृष्ण की हो तो सबसे पहले उनकी नगरी वृंदावन का नाम याद आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं।

वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। अक्सर लोग मथुरा और वृंदावन को एक ही तीर्थ के रूप में देखते और मानते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थान भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़े हैं। वृंदावन मथुरा से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे यमुना नदी के किनारे तुलसी, कदम और करील के वनों के बीच बसा है, जो एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक नगर है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहाँ हजारों की संख्या में मंदिर और आश्रम है, जो प्रेम, भक्ति और अध्यात्म का मुख्य केंद्र है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन और युवावस्था इसी स्थान पर बिताई थी। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। वृंदा के तप के कारण इस स्थान को वृंदावन कहा जाता है और वृंदावन तुलसी को भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सभी धामों से ऊपर ब्रजधाम और सभी तीर्थों से श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम। इसकी महिमा का बखान करते संत महात्मा कहते हैं कि एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार त्रिवेणी में नहाकर आओगे, चार बार चित्रकूट, नौ बार नासिक, बार बार जाके बद्रीनाथ घूमाओगे, कोटी बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया और जगन्नाथ, जहाँ चाहे जाओगे, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन में अनेकों धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं और इन्हीं पर्यटक स्थलों को देखने और मंदिरों के दर्शन करने हजारों की संख्या में साल भर लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ के मंदिरों की अगर बात करें तो यहाँ के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है भगवान श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप को ठाकुर जी के रूप में पूजा जाता है। बांके बिहारी मंदिर सिर्फ वृंदावन ही नहीं, पूरे देश का सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। ये काफी विशाल और खूबसूरत है। राजस्थानी शैली में बने इस मंदिर में भगवान कृष्ण की बेहद सुंदर मूर्ति है, लेकिन मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो लेना मना है। वृंदावन में ही इस्कॉन मंदिर भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर अपनी स्वच्छता, अनुशासन और भव्य आरती के लिए जाना जाता है। और इस्कॉन मंदिर के पास ही है प्रेम मंदिर। ये मंदिर भी शानदार मंदिरों में से एक है और मंदिर का परिसर काफी बड़ा है। प्रेम मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और संगमरमर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शाम के समय इसकी रंग बिरंगी लाइट देखने लायक होती है। यहीं पर राधा रमण मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। राधा रमण मंदिर वृंदावन की एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा स्थल है, जो राधा और कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा की उत्कृष्ट प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये मंदिर काले पत्थरों से बनाया गया है। होली और जन्माष्टमी के त्योहारों के समय इस मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। और अब बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध निधि वन की। निधि वन को एक रहस्यमय और पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की सभी कहानियां और रहस्यों में से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी है निधि वन की रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं आज भी हर रात निधि वन में

निधि वन के पेड़ पौधे भी अपने आप में बेहद अनोखे हैं, जिन्हें देखते ही पता लग जाता है कि ये पेड़ आम पेड़ों से अलग है। आमतौर पर कोई भी वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन निधि वन के पेड़ों की शाखाएं इसकी जड़ों की ओर बढ़ती हैं और इन पेड़ों की ऊंचाई भी बेहद कम होती है। तो ये कुछ स्थान है, जब आप वृंदावन जाएंगे तो यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं और इनकी जो दिव्य आभा है उसे महसूस कर सकते हैं। वृंदावन केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भक्ति, संस्कृति, संगीत और मानवीय भावनाओं का संगम है। कोई भी मनुष्य जब तनावपूर्ण जीवन से परेशान होकर वृंदावन आता है तो यहाँ के भक्ति, सादगी और प्रेम से जीवन का नया अर्थ पा जाता है। वृंदावन केवल एक धार्मिक स्थान ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का अनुभव है। यहाँ की हर गली में राधा कृष्ण के प्रेम की मधुरता बसी हुई है।

बहनों, अभी आप सुन रही थी क्रम ऐसा देश है मेरा, जिसमें आपने वृंदावन धाम के बारे में जाना। और आपको बता दें बहनों कि धार्मिक स्थलों पर जब भी हम जाएं तो वहां की पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थानों में, चाहे वो किसी भी जगह का स्थान हो, वहां पर कूड़ा करकट की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी हमने देखा कि केदारनाथ धाम में एक मुहिम चलाई जा रही है कि जब आप केदारनाथ धाम से भगवान शिव के दर्शन करके वापस आते हैं तो आप वहां से 2 से 2.5, 3, 4, 5 किलो जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अगर आप चाहें तो वहां एक संस्था के द्वारा वो कूड़ा इकट्ठा किया गया है, आप उन्होंने थैलियां बांधी हुई हैं, तो हम उसमें से जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उठा सकते हैं, उतना कूड़ा अपने साथ वापस ला सकते हैं। ऐसा करके हम उस स्थान को साफ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। और सच कहें तो हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जो हमारे धार्मिक स्थान हो, ऐतिहासिक स्थान हो, या देश का कोई भी कोना है, अगर वो हमारे द्वारा, मनुष्यों के द्वारा ही गंदा किया जा रहा है, तो उसे साफ करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। इस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में, इन धार्मिक स्थानों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं फिल्म संगीत के साथ, और उससे पहले कुछ संदेश।

0: जनधन का एहसास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

बहनों, इस गीत के बाद कार्यक्रम का समय समापन की ओर है, तो आपको चलते चलते बता दें कि हमारे महिला जगत के अंतर्गत आप तीसरे मंगलवार को सुनती हैं हमारे यहाँ से कार्यक्रम हेलो सखी, जिसमें फोन कॉल के माध्यम से आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकती हैं, अपनी बात हमसे कह सकती हैं। और इसके लिए हम आपको नंबर बता देते हैं बहनों, हमारा नंबर है 9457072888। एक बार अंग्रेजी में भी बता देते हैं बहनों आपको हम, 9457078288। और लैंडलाइन नंबर भी है बहनों हमारा, जो है 01341 इसका कोड है, और 30105 यानी कि 30105 नंबर है। इस नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकती हैं और हमारे साथ सीधे जुड़ सकती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। याद रखिएगा, महीने का तीसरा मंगलवार और समय यही रहेगा 1:15 पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें बहनों कि महीने के आखिरी शनिवार को आप सुनती हैं चौथे शनिवार को हमारे यहाँ से लघु नाटिका, तो वो भी सुनिएगा। तो फीडबैक के लिए हमने आपको नंबर बता ही दिए हैं, इन नंबरों पर आप हमें फीडबैक दीजिएगा। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समेट लेते हैं, अनुमति दें। नमस्कार।

बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम महिला जगत। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 1:45 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकधारा। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं जॉन सारी लोकगीत। कलाकार हैं कुसुम नेगी और साथी। तो आइए सुनते हैं ये जौनसारी लोकगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं जॉन सारी लोकगीत।

0: कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस में भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
2: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
1: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
3: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि यह लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
5: इन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरमेंट्स, द इंडियन आर्मी मस्ट रिमेन अडॉप्टिव एंड फ्यूचर रेडी। आई अर्ज यू टू बी लाइफ लॉन्ग लीडर, लर्नर, कोरेजस, डिसीजन मेकर एंड एथिकल लीडर।

0: प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
2: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
4: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा

0: तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 2:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गीतकार। सभी श्रोताओं को रीना राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता मित्रों, जब शब्दों में ईमानदारी हो तो वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। आज के हमारे एक ही गीतकार कार्यक्रम में हम एक ऐसे फनकार की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आधुनिक दौर में सिनेमा को अपनी मखमली संजीदा और मिट्टी से जुड़ी शायरी से महकाया है। जी हाँ, आज की हमारी ये महफिल सजी है बेहद उम्दा और जहीन गीतकार वरुण ग्रोवर के नाम। श्रोताओं, वरुण ग्रोवर 26 जनवरी 1980 को जन्मे थे और आप एक भारतीय हास्य अभिनेता, पटकथा लेखक और गीतकार भी हैं। उन्होंने 63वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार साल 2015-16 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार जीता। वरुण ग्रोवर के लिखे गीतों में उत्तर भारत की सौंधी खुशबू भी है और जिंदगी का गहरा फलसफा भी। तो चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म मसान के इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता मित्रों, कार्यक्रम चल रहा है एक ही गीतकार, और आज हमारे गीतकार हैं वरुण ग्रोवर। श्रोता, वरुण ग्रोवर के गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही है, सरलता में छुपा गहरा एहसास। वो जब लिखते हैं तो मानो आम जीवन की उलझने भी आसान लगने लगती हैं। गंभीर और संजीदा गानों के साथ साथ वरुण ग्रोवर ने देसी ठुमके और लोक संगीत को भी बेहद अनोखे अंदाज में पिरोया है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये गाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आइए सुनते हैं मस्ती और लोक रंग से भरपूर ये खास गीत।

है। दोस्तों, वरुण ग्रोवर सिर्फ शब्दों के जादूगर नहीं हैं, वो भावनाओं के चितेरे हैं। चाहे फिल्म दम लगा के है ईशा का, मोह मोह के धागे हो, या संदीप और पिंकी फरार के गीत, उनकी कलम हमेशा कुछ नया और ताज़ा रचती है। सुनवाएंगे आपको दम लगा के है ईशा फिल्म का ये गीत मालिनी अवस्थी और राहुल राम के स्वर में। इस गीत को संगीत दिया अनु मलिक ने।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: आकाशवाणी नजीबाबाद से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार, और आज के गीतकार हैं वरुण ग्रोवर। श्रोता मित्रों, यदि हम बात वरुण ग्रोवर के हिमाचल प्रदेश से लेकर के मुंबई तक के सफर की अगर हम बात करें, तो भाई उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी, पिता आर्मी इंजीनियर, और वरुण ग्रोवर ने अपना शुरुआती जीवन उत्तराखंड में ही बिताया और उसके बाद वे लखनऊ उत्तर प्रदेश चले गए। उन्होंने 2003 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पुणे में सॉफ्टवेयर सलाहकार के तौर पर कुछ समय काम करने के बाद वे 2004 में मुंबई चले गए। 2005 में वे टीवी श्रृंखला द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के स्टाफ लेखक में से एक थे और फिर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी और हिंदी फिल्म उद्योग में संगीत लेखक का काम किया और उनका काम हमारे सामने है। एक बहुत ही सुंदर गीत उनका लिखा हुआ, आइए आपको सुनवाते हैं पहले।

सुई धागा फिल्म का ये गीत अनु मलिक के संगीत निर्देशन में पपन के स्वर में आपने सुना। जीवन की सच्चाई को कितनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है ना वरुण ग्रोवर ने। जी हाँ, यही तो खासियत है वरुण ग्रोवर की कलम की। आइए एक और खूबसूरत गीत फिल्म जुबान से

रचील वर्गीस की स्वर में, आशु पाठक के संगीत निर्देशन में फिल्म जुबान के इस गीत के साथ ही आज का एक ही गीतकार कार्यक्रम संपन्न करने की अवरीना राजपूत को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। शाम 5 बजे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की संध्याकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में श्रोताओं आई सुनते कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज जानकारी देंगे भूजल प्रबंधन में सुधार योजना के बारे में, और इस क्रम में हम श्रोताओं लेकर आए हैं आपके लिए अटल भूजल योजना और जल क्रांति अभियान। क्योंकि देखिए श्रोताओं, सरकार लगातार प्रयासरत है उन गरीब परिवारों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, साथ ही सीमांत किसान हो या कोई भी निचले स्तर के जो भी हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए नई नई योजनाएं केंद्र सरकार ने शुरू की है। और देखिए श्रोताओं, अब गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में पानी, भाई इससे अनमोल चीज़ वाकई में गर्मियों में कुछ नहीं है, क्योंकि अगर पानी ना मिले तो जीवन शायद मुमकिन ही ना हो पाए। उसी क्रम में सरकार ने घर घर तक जल पहुंचाना और वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए इसी क्रम में कई योजनाएं शुरू की हैं, और उन्हीं योजनाओं में से हम आपके लिए लेकर आए हैं अटल

महत्वाकांक्षी और दूरगामी योजना है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर सन 2019 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती, इस जयंती को श्रोताओं हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इस अवसर पर आधिकारिक तौर पर शुरू किया था। इस योजना को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था श्रोताओं, वो था कि देश के कई हिस्सों में गहराता जा रहा भूजल संकट। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है श्रोताओं, लेकिन अंधाधुंध दोहन और पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा के कारण देश के कई राज्यों में जल स्तर खतरनाक स्तर से भी नीचे चला गया था, जिससे खेती और पीने के पानी का संकट मंडराने लगा था। इसी गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए 6000 करोड़ के बजट के साथ इस योजना की रूपरेखा तैयार की गई। जी हां श्रोताओं, और इस योजना में 50% राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में और शेष 50% राशि केंद्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से देश के उन 7 राज्यों के अति दोहन और संकटग्रस्त क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां भूजल की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इनमें गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है, जिसके तहत कुल 80 से अधिक जिलों की लगभग 8,220 ग्राम पंचायतों को कवर किया जा रहा है। जी हाँ श्रोताओं, और इस योजना का सबसे बड़ा फायदा और इसकी मुख्य विशेषता है सामुदायिक नेतृत्व वाला भूजल प्रबंधन मॉडल। ये केवल सरकारी निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मांग पक्ष प्रबंधन पर जोर दिया जाता है, यानी पानी की पूर्ति बढ़ाने के साथ साथ उसकी खपत को कम और नियंत्रित करना सिखाया जाता है। इसके तहत गांवों में जल सुरक्षा योजनाएं बनाई जाती हैं, जहां ग्रामीण खुद बैठकर ये हिसाब लगाते कि उनके गांव में कितना पानी उपलब्ध है और कितना पीने के लिए चाहिए, कितना फसलों के लिए चाहिए और बचे हुए पानी को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से वर्षा जल संचयन, चेक डैम, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार द्वारा जमीन के नीचे का वाटर लेवल सुधर रहा है। जी हां श्रोताओं, साथ ही कृषि क्षेत्र में पानी की भारी बचत हो रही है, क्योंकि किसानों को बाढ़ सिंचाई के बजाय ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा विविधीकरण के जरिए कम पानी लेने वाली फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो श्रोताओं, ये तो थी बात अटल भूजल योजना की, और अब बात करते हैं जल क्रांति अभियान के बारे में। जल क्रांति अभियान श्रोताओं, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ही शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर 5 जून 2015 को शुरू किया गया था। इस अभियान को देशव्यापी स्तर पर शुरू करने का मुख्य कारण भारत में तेजी से बढ़ता जल संकट, घटता भूजल स्तर, नदियों का प्रदूषण और सूखे जैसी गंभीर स्थितियां हैं। भारत के पास दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा है श्रोताओं, लेकिन वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% ही उपलब्ध है, जिसके कारण देश के कई हिस्से वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्र बन चुके हैं, यानी कि पानी की कमी जहां पर है। इसी समस्या के समाधान के लिए और पानी को एक साझा राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में संरक्षित करने के लिए इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को एक जन आंदोलन बनाया था। इस योजना का पहला फायदा तो ये रहा कि जल ग्राम योजना के तहत हुआ, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले के उन 2 गांवों को चुना गया जहां पानी की सबसे अधिक कमी थी और वहां जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन काम किया गया। दूसरा ये कि इसके माध्यम से पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार और जीआईएस मैपिंग की गई, जिससे पुराने तालाब, पुराने जल स्रोतों का को नया जीवन मिला। साथ ही उद्योग और शहरी क्षेत्रों में उपयोग किए गए पानी के रिसाइकिल को बढ़ावा दिया गया। कोई भी नागरिक या किसान अपने क्षेत्र के जिला जल संसाधन कार्यालय या ग्राम पंचायत के माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बन सकता है। इसके तहत

सुनिश्चित होती है। तरस जाओगे एक दिन तुम इस बूंद बूंद पानी को, तरस जाओगे एक दिन तुम इस बूंद बूंद पानी को, अगर यूं ही बहाते रहे अपनी इस अनमोल जवानी को। अभी संभल जाओ तो आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी, अभी संभल जाओ तो आने वाले नस्लें मुस्कुराएंगी, वरना ये सूखी धरती सिर्फ आंसुओं की भाषा सुनाएगी।

इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, और रात 10 होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8 होगा कार्यक्रम गीत संध्या, और 8:30 पर होगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के गीत। ऋतु श्री शुक्ला के गाए भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत होगा शाम 6:55

55 मिनट पर और 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह से वार्ता, विषय होगा भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प कृषि जगत। इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लोकगीतों और रागिनियों का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। और आइए अब एक नजर डालते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर और 10 होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या होगा रात 8:00 और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से अदबी दुनिया। इस कार्यक्रम में कल शाम 7:50 पर कलामी शायर होंगे शाहबाज आलम। कुमकुम चट्टोपाध्याय के गाय गीत आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर और शाम 6:55 पर होगा कार्यक्रम छाया गीत। 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे शशि सैनी से विश्व रक्तदाता दिवस पर विशेष वार्ता जिसका विषय होगा रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। कृषिगत कार्यक्रम में कल शाम 6:05 पर स्थलीय रिकॉर्डिंग क्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे खरीफ में दलहन की उन्नत खेती विषय पर डॉक्टर हरिंद्र कुमार सैनी सहायक विकास अधिकारी कृषि ब्लॉक किरतपुर से जितेंद्र कुमार की बातचीत। युववाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर क्रम होगा झलकी मेरा सपना उन्नत भारत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:00। जानकारी के विषय होंगे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी ई नाम। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत। बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटी का सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। फिल्मी संडे, इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर फिल्म रहेगी हीर रांझा और 12:05 पर श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम रहेगा आपका पत्र मिला। बात आसपास की सुनेंगे 9:50 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में कल सवेरे 9:20 पर आप सुनेंगे शिवानी कर्माकर के गाए रुहेलखंडी लोकगीत और सूरज के साथ साथ कार्यक्रम होगा सवेरे 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। मीडियम वेव 314.47 अर्थात 954 kHz पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: को हम दोनों की ओर से प्यार भरा नमस्कार। वैसे मोनिका, ये तो सच है कि हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी स्ट्रगल से गुजरना ही पड़ता है, जैसे पढ़ाई का ले लो, करियर, परिवार, या कभी तो खुद को ही संभाल कर रखना ही एक स्ट्रगल बन जाता है।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, पर अभी ये प्रोग्राम शुरू होते ही कहाँ तुम उलझाने लगी हो बातों में। जरा पहले आज के सेगमेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ म्यूजिकल तड़का लगाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, रूबरू करवाते हैं आपको आज के सैटरडे स्पेशल सेगमेंट से, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ खास है आज, स्क्रैप बुक, लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 6 और गीत आपके नाम, जो हम सबका फेवरेट है।
1: और गीत आपके नाम सेगमेंट की खास बात ये होती है कि आप उसमें हमारे साथ मैसेजेस के जरिए भी जुड़ सकते हैं और गीतों को अपने लव्ड वंस के नाम भी कर सकते हैं,
0: जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और

0: जो ये हमें भेजने वाले हैं दयारपुर बावली महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक शेरी वडनेर अकोला से, अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर।
1: और एक और मैसेज हमें मिल चुका है जनकपुरी सहारनपुर से। भेजने वाले दोस्तों के नाम है जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर डिकैस्ट्रो और विलेज डिकैस्ट्रो। तो चलो फिर शिवानी गीत आपके नाम सेगमेंट का ये पहला गीत सुनवाते हैं इन सारे दोस्तों के नाम।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे आसास कर लोट को,
2: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
4: अच्छा सुनो ना, आप आज शाम के खाने में क्या खाओगे?
5: अभी सोच के बताता हूँ।
4: सोचना क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, मटर पनीर बनाऊँ?
5: यार ऐसा करते हैं ना कि खाना आज बाहर खाने चलते हैं।
4: अरे क्या मतलब, आपको ऐसा लगता है कि मैं खाना बनाकर थक जाती हूँ या मैं खाना अच्छा नहीं बनाती?
5: अरे नहीं नहीं, लेकिन यार मैं बर्तन मांज मांज के थक गया हूँ।
4: शिवानी एक बात बताओ जरा, जब फोन की बैटरी 1% हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या याद आता है?
5: ओह ये भी कोई पूछने की बात है मोनिका, ऑब्वियसली यार चार्जर, और क्या याद आएगा? उस टाइम तो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम लगता है फोन चार्ज करना।
4: और अगर थोड़ी देर चार्जर ना मिले तो कितना परेशान हो जाता है ना।
5: चार्जर मिलते ही चैन की सांस आ जाती है।
4: बस फिर यही तो समझाना था दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही तो होती है, कभी कभी हमारी एनर्जी, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी हिम्मत भी लो बैटरी मोड में चली जाती है, और तब बस यही लगने लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया।
5: लेकिन इस वक्त ही जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, और हम भी डेली कुछ बताते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं हमारे अलग अलग सेगमेंट्स के जरिए, जैसे कि आज के हमारे कुछ खास है। आज में हम बात करने वाले हैं
4: टेम्पररी स्ट्रगल लेकिन परमानेंट सक्सेस, यानी कि आज की परेशानी कल की ताकत बन सकती है और आज की मेहनत हमारे आने वाले कल की पहचान।
5: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों जैसा हमने हमारे आज की शुरुआत में भी कहा था कि हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी स्ट्रगल से जरूर गुजरता है, और सबसे मुश्किल बात पता है दोस्तों क्या है?
4: हाँ हाँ बताओ क्या?
5: यही कि जब हम मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता।
4: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा, और उस टाइम पर हमारा दिमाग भी तो मतलब पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता है, जैसे कि हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे।
5: तो चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ मोनिका। अगर एक बीज को देखा जाए तो जब से उसे मिट्टी में डाला जाता है उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा होता है।
4: और मतलब बीज को उस टाइम पर शायद ये लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर ऐसा थोड़ी ना होता है।
5: वही अंधेरा उसकी ग्रोथ की शुरुआत होती है, फिर बस धीरे धीरे वो वही बीज पेड़ बन जाता है।
4: और फिर सब क्या कहते हैं, कितना अच्छा पेड़ है, छाया देता है, फल देता है, मतलब कुल मिलाकर सब लोग तारीफ करते हैं लेकिन किसी को उसका स्ट्रगल नजर नहीं आता।
5: बस यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है इस वक्त आप भी किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो दोस्तों।
4: हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपकी मेहनत जाया जा रही है, लेकिन याद रखिए हर सफल इंसान की कहानी के पीछे एक लंबी स्ट्रगल की पूरी कहानी छुपी होती है।
5: इसी से जुड़ी आपको एक बात और आगे हम बताएंगे, पर उससे पहले मैसेजेस देख लेते हैं, अपने गीत आपके नए

0: नाम के सेगमेंट में।
1: बिल्कुल।
0: और हमें ये मैसेज मिल रहा है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। इसी के साथ हमें एक और मैसेज मिला है जलालाबाद वेस्ट से। भेजने वाले हैं सुरेश गंगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
1: अगला मैसेज मैं भी देख लेती हूँ, जो कि हमें मिला है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। भेजने वाले दोस्तों के नाम हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। एक और मैसेज हमें मिला है वार्षिक क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से। भेजने वाले दोस्तों के नाम हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और सुएब खान। तो चलो फिर गीत आपके नाम सेगमेंट का ये अगला गीत करते हैं हमारे इन सभी दोस्तों।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्ट्रगल से जुड़ी। ये एक्सपीरियंस तो सबके साथ हुआ होगा। जब स्कूल में एग्जाम होते थे ना, तब एक रात पहले कैसा लगता था कि जैसे सब भूल गए हों।
4: हाँ, और एग्जाम के बाद लगता था जो आता था वो भी हम ठीक से नहीं लिख पाए हैं।
3: लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आता था, तब वही एग्जाम से पहले और बाद की टेंशन को याद करके यार बहुत हंसी आती थी।
4: और यही तो जिंदगी का रूल भी होता है ना, जो स्ट्रगल आज बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होता है, कुछ महीने या सालों बाद जाकर वही एक पूरी कहानी बन जाता है।
3: जी हाँ, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या नाम नहीं होता, कभी कभी तो बस खुद से हार ना मानना भी एक सक्सेस ही होती है।
4: और मुश्किल वक्त में खुद पर भरोसा रखना भी तो सक्सेस ही होती है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, रात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, उसके बाद सुबह जरूर आती है।
3: जी, स्ट्रगल चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, परमानेंट वो नहीं होता है।
4: और उस स्ट्रगल से जो हमें सक्सेस मिलती है ना, और जो उससे सीखने के लिए मिलता है, वो हमेशा परमानेंट होता है।
3: और हमारे दोस्तों के मैसेजेस, हमारे सेगमेंट गीत आपके नाम में आना भी तो परमानेंट होता है मोनिका।
4: बिल्कुल।
3: तो चलिए देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हमारे दोस्तों के मैसेज हमें मिले हैं।
4: बिल्कुल। तो अगला मैसेज हमें मिला है,
3: तो ये मैसेज हमें मिला है पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं सुदर्शन साहा।

0: प्रखर, नीति और अश्विन, मंगला और मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी के साथ हमें अगला मैसेज मिला है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी, दीपाली, युवान और उनकी पूरी फैमिली। इसके साथ हमें एक और मैसेज मिला है दादरी गेट भिवानी से, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल।
1: और आरती अरोड़ा, पिंकी लवली, मिंटू टॉमस का मैसेज हमें मिला है पंजाब वंडिंग खेड़ा से। और एक और मैसेज है तारा सिंह का, विलेज खानपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, यूपी से। एक और मैसेज हमें लिखा है शाही मार्केट सियोरा, जिला बिजनौर से। लिखने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात चौधरी, अदीब चौधरी और कादिर। वो लिखते हैं वाकई जिंदगी में किसी की जान बचा दो, वो तमाम जिंदगी दुआएं देता रहेगा। और मैंने अपनी जिंदगी में 2 बार खून दिया है। एक बार हमारे दोस्त की बीवी को जरूरत पड़ी थी तब दिया, और एक दफा दिल्ली में एक मजदूर था, उसकी पेट की ऐंठ फट गई थी, उसकी जान बच गई थी, जिसकी वजह से हमने उसे खून दिया था। खून देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस 2-4 दिन फल फ्रूट खा लेने चाहिए और मौसमी का जूस पी लेना चाहिए तो तबीयत सही रहती है। ये आपने बहुत अच्छा लिखा है और वाकई ऐसा ही होता है। खून देने से फर्क नहीं पड़ता, तबीयत हमारी हेल्थ अच्छी रहती है अगर हम अच्छे से खाएं पिए, लेकिन जिसे हम खून देते हैं वो तमाम उम्र हमें दुआएं ही देता रहता है। ये आपने काफी अच्छा लिखा है। आपकी कहानी सुनकर शायद किसी को और हिम्मत मिले और वो अपना खून किसी ऐसे इंसान को दे पाए जिसे जरूरत
0: और
1: हो।
0: कल मोनिका रक्तदान दिवस भी है, 14 जून
1: बिल्कुल
0: का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अगला मैसेज हमें मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और इसी के साथ अगला मैसेज हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल सेगमेंट गीत आपके नाम का, ये अगला गीत आप सबको सुनवाते हैं आपके नाम।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ

0: पापा पापा, मुझे ना आपसे कुछ पूछना है।
1: हाँ बोलो बेटा।
0: मेरा ना एक क्वेश्चन है, आप जवाब दोगे उसका?
1: हाँ बेटा पूछ।
0: अरे मैंने सुना है कि जो श्री राम भगवान है, हम उनकी पूजा आज तक इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने त्रेता युग में अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया था।
1: हाँ बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है।
0: और जो भक्त प्रहलाद हैं, उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने द्वापर युग में अपने पिता की कोई बात नहीं मानी थी, है ना?
1: हाँ वैसे ये बात तो तूने ठीक बताई है, मगर तेरा क्वेश्चन क्या है भाई?
0: अब आप मुझे ये बताओ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं या नहीं करूं?
1: अरे मेरे प्यारे बेटे, ये कलयुग है, हम दोनों के लिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों तेरी माँ की आज्ञा का पालन करें, वरना बेटे हम दोनों ही पूजे जाएंगे।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
0: चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्क्रैप बुक। और आज आप सुनेंगे स्क्रैप बुक में दरक्षा से उज्मा की बातचीत।
3: हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और आज हमारा सेगमेंट स्क्रैप बुक बिल्कुल होने वाला है मोबाइल की गैलरी जैसा। फर्क बस इतना है कि गैलरी में फोटो मिलती हैं और यहाँ मिलेंगी यादें, कुछ पुरानी, कुछ मजेदार और कुछ ऐसी जिन्हें याद करके आज भी हंसी छूट जाए। और ये सेगमेंट होने वाला है राउंड से भरा हुआ और बहुत ही मजेदार और फनी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम अपने खास मेहमान की याद के खजाने का ताला खोलने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कुछ फोटो एल्बम बनाते हैं और कुछ लोग ऐसी यादें बना लेते हैं जो पूरी जिंदगी मुफ्त का मनोरंजन देती रहती हैं। आज हम एक ऐसे ही शानदार मेहमान के साथ बैठे हैं जिनका स्क्रैप बुक में यकीनन कुछ ऐसे किस्से छिपे होंगे जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अपनी उन प्यारी सी खूबसूरत सी साथी, अपनी दोस्त का नाम, कि क्या नाम है उनका। तो दोस्त, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम दरक्षा है।
3: दरक्षा, कैसी हैं आप?
4: बिल्कुल सही हूँ।
3: दरक्षा, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
4: बहुत अच्छा लग रहा है।
3: अच्छा, ये तो मैंने आपसे पूछ लिया, लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं, ये इतने प्यारे से नाम का मीनिंग क्या है?
4: इसका मीनिंग है ब्रिलियंट, शाइनिंग,
3: वाओ,
4: चमकदार,
3: चमकदार चीज। बहुत ही खूबसूरत, जैसी आप खुद हैं वैसे ही आपके नाम के जो मीनिंग है वो है। तो दरक्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या करती हैं आप?
4: मैं एक स्टूडेंट हूँ और मदर भी हूँ।
3: आप एक स्टूडेंट भी हैं और मदर भी हैं?
4: हाँ जी, हाँ जी।
3: बहुत ही अच्छी बात है। आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी स्टडीज भी और अपनी फैमिली को भी?
4: बस करना पड़ता है, कर लेते हैं, मजा आता है बहुत।
3: बहुत मजा आता है।
4: हाँ जी।
3: मुझे तो इमेजिन करके ही बड़ा टफ सा लग रहा है कि आप इन चीजों को मैनेज कैसे करती हैं।
4: बहुत मजा आता है बेबी के साथ खेलना, पढ़ाई करना, जब करते हैं तो सब मैनेज हो ही जाता है।
3: बिल्कुल। तो आप अपनी स्टडीज में क्या कर रही हैं?
4: मेरा मास्टर्स चल रहा है।
3: आप मास्टर्स कर रही
4: हाँ
3: हैं?
4: जी।
3: आप एक बेबी की भी मास्टर हैं और अपने सब्जेक्ट में भी मास्टर्स कर रही
4: हाँ
3: हैं।
4: जी, हाँ जी।
3: और दर्शन, आपको और क्या क्या चीजें पसंद है?
4: मुझे कहानी सुनना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है,
3: आपको कहानी सुनना, सिंगिंग करना और
4: कुकिंग
3: कुकिंग
4: करना।
3: करना पसंद है।
4: हाँ जी।
3: तो कुकिंग करना आपको पसंद है, खाना क्या पसंद है, मतलब आपको क्या खाना पसंद है?
4: मुझे गोभी पराठा बहुत पसंद है।
3: गोभी पराठा।
4: हाँ जी।
3: और मुझे लगता है आप बनाती हैं, तो वाकई जब आपको कुकिंग पसंद है तो टेस्टी भी बहुत बनता होगा।
4: माशाल्लाह, बहुत टेस्टी बनता है।
3: तो और आपने कहा कि आपको सिंगिंग भी पसंद है, कौन कौन से गाने आपको पसंद है?
4: मुझे थोड़ा ओल्ड सॉन्ग पसंद है।
3: अच्छा, तो आप हमारे श्रोताओं को, आपको जो आपके दोस्त सुन रहे हैं, उन्हें कुछ सुनाना चाहेंगी?
4: बिल्कुल, क्यों नहीं।
3: तो अपना कोई भी एक फेवरेट सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो वो सुनाएंगी?

0: बहुत ही खूबसूरत, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी प्यारी सी लड़की इतना प्यारा सा गीत भी गा सकती है, इतना प्यारा सा सॉन्ग भी सुना सकती है। अच्छा, आपकी ये हॉबी कब से है, कब से आपको गाना पसंद है?
1: मुझे बचपन से सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा।

0: मतलब कह सकते हैं आपकी सारी हॉबीज में ये सबकी मास्टर है.
1: हाँ, सबकी मास्टर.
0: बहुत ही खूबसूरत. दरक्षा मैं आपको बता दूँ, हमारा जो सेगमेंट है स्क्रैप बुक, इसमें हमारे होते हैं 3 राउंड्स, जिसमें से हमारा जो पहला राउंड है वो तो चल रहा है, जिसमें हम आपके बारे में जानते हैं. तो ये हमारा राउंड चल रहा है. हमारा सेकेंड राउंड होगा दिस और दैट. आपको मैं 2 चीज़ें दूंगी जिसमें से आपको एक चूज करनी होगी. टाइम आपको नहीं दिया जाएगा. आपको जैसे ही मैं आपको 2 चीज़ें दूंगी, आपको डायरेक्ट उनमें से एक चूज करनी होगी. तैयार हैं आप?
1: हाँ जी.
0: और हमारा थर्ड राउंड होगा रिडल्स, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कुछ रिडल्स और आपको देने होंगे उसके जवाब. तो चलते हैं अपने सेकंड राउंड की ओर. तैयार हैं आप?
1: जी बिल्कुल.
0: तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड राउंड की ओर. योगा या योगा प्लस मेडिटेशन, सॉफ्ट ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक आइस टी,
1: सॉफ्ट ड्रिंक.
0: ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केट शॉपिंग,
1: मार्केट शॉपिंग.
0: ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग.
1: ट्रैवलिंग.
0: ट्रैवलिंग. घूमने का भी शौक रखती हैं गाने के साथ
1: बिल्कुल.
0: साथ. तो बिल्कुल जैसे आपके सफर होते होंगे, आपने गाना भी वैसा ही सुनाया है. स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी शेक.
1: स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम.
0: स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम.
1: आइसक्रीम.
0: गुड. फ्राइड राइस और फ्राइड नूडल्स,
1: फ्राइड राइस.
0: पनीर टिक्का और पनीर बटर मसाला.
1: पनीर टिक्का.
0: पनीर टिक्का. लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक.
1: लॉन्ग ड्राइव ऑब्वियसली.
0: लॉन्ग ड्राइव. हाँ बिल्कुल, वो आप पसंद करोगी क्योंकि उसमें आपको गाने सुनने को मिलेंगे,
1: म्यूजिक.
0: गाने को मिलेंगे.
1: मुझे
0: किताब पढ़ना और कहानी सुनना.
1: अच्छा लगता है कहानी सुनना.
0: कहानी सुनना. जॉगिंग या फिर जिम वर्कआउट.
1: जिम वर्कआउट.
0: हॉट कॉफी और हॉट चॉकलेट.
1: हॉट चॉकलेट.
0: गर्म चाय और ग्रीन टी.
1: ग्रीन टी.
0: फ्रूट सैलेड या फ्रूट जूस.
1: जूस.
0: इमली की चटनी और इमली का पानी, मीन्स गोलगप्पे.
1: गोलगप्पे.
0: गोलगप्पे. ओब्वियसली आप लड़की हैं तो गोलगप्पे ही
1: फर्स्ट
0: पसंद
1: लव.
0: करेंगी. डार्क चॉकलेट और डेरी मिल्क.
1: डेरी मिल्क.
0: चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट केक.
1: चॉकलेट आइसक्रीम.
0: चॉकलेट आइसक्रीम. आलू पराठा और आलू टिक्की.
1: आलू पराठा.
0: आलू पराठा. वैसे तो मैंने यहाँ पे जानबूझकर गोभी पराठा नहीं रखा है, नहीं तो आपकी पहली चॉइस वही बन जाती है ना. तो दरअसल हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होता है और आपने बहुत अच्छे से इस राउंड को कंप्लीट किया है. तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड राउंड की ओर. तो दरअसल हमारे 2 राउंड तो कंप्लीट हो चुके हैं, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे राउंड की ओर, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ पहेलियां यानी कुछ रिडल्स और आपको देना होगा उसका एकदम सही जवाब. अगर आप देती हैं हमें किसी भी रिडल का गलत जवाब तो आपके पॉइंट्स घट जाएंगे. तो तैयार हैं आप?
1: हाँ जी.
0: ये रही आपकी पहली रिडल. एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले, बताओ क्या है?
1: मुझे.
0: गुड. दुनिया भर की करता सैर, धरती पर ना रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम.
1: चांद.
0: गुड. लाल घोड़ा रुका रहे, काला घोड़ा भागता जाए.
1: शायद आग और धुआं.
0: वेरी गुड. काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरे दूसरे की बारी.
1: तवा और रोटी.
0: आई थिंक ये आपको पहले से पता थी, है ना, आपने सुनी होगी पक्का
1: हाँ
0: कहीं ना
1: जी.
0: कहीं. अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़ के तुम्हें पढ़ाऊं, बताओ मैं कौन हूं.
1: ऐनक चश्मा.
0: बिल्कुल. दरक्षा आपकी नेक्स्ट जो रिडल है वो है, एक राजा की अनोखी रानी, दुम के सहारे पीती पानी, बताओ तो जरा.
1: दीपक.
0: बिल्कुल. एक फूल अनेकों रंग का, सर पर हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाए, पर छाया में मुरझाए.
1: जो बारिश में लगाते. अम्ब्रेला.
0: बिल्कुल. अच्छा आपने ऐसा क्यों कहा जो बारिश में लगाते हैं, आपको ऐसा क्या लगा?
1: वो रंग थे ना उसमें ब्लैक, ऑब्वियसली जो खुलता है वो.
0: बिल्कुल, यानी आपने पहेली से अंदाजा लगा
1: हाँ
0: लिया कि
1: हाँ
0: छाता ही होगा.
1: हाँ
0: दरक्षा हमारी जो अगली रिडल है वो थोड़ी सीरियस सी है, तो आप उसके जवाब देने के लिए तैयार है?
1: हाँ जी. हाँ जी बिल्कुल.
0: चलिए आपकी अगली और आखिरी रिडल है, एक गुफा और 32 चोर, 32 रहते हैं तीनों ओर, 12 घंटे करते हैं काम, बाकी वक्त करे आराम.
1: दांत. टीथ.
0: आपके कॉन्फिडेंस से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने रिडल सुनने से पहले आपने जवाब इमेजिन कर लिया था. 32 से.
1: 32 से.
0: तो दरक्षा कैसा लगा आपको हमारे प्रोग्राम में शामिल
1: बहुत
0: होकर?
1: मजा आया, बहुत ज्यादा मैंने एंजॉय किया.
0: तो दरक्षा आप जाते जाते हमारे दोस्तों को और कुछ कहना चाहेंगी, अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगी?
1: मैं बस अपने दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अपना बचपन खुल के जी, एंजॉय करें, क्योंकि बचपन कभी लौट कर नहीं आता. मैं अपना बचपन बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा.
0: और मुझे लग रहा है आपने अपना बचपन बहुत ही खुल के जिया है ना.
1: बहुत खुल के जिया है, बहुत मजे किए हैं.
0: आपने दोस्तों की याद आती है?
1: बहुत ज्यादा याद आती है. कॉलेज टाइम, कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा. ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा. काश अगर होता ऐसा कि वापस आ जाता.

0: मैं जरूर जाती।
1: तो दरक्षा, आप इस टाइम फिलहाल जिन दोस्तों को मिस कर रही हैं उनके बारे में या उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि यार मिल जाओ कहीं, फिर से वही वक्त जीते हैं। बहुत मिस करती हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को, और वो टाइम बहुत याद आता है।
1: तो चलिए, अपने उन दोस्तों को जिन्हें आप मिस कर रही हैं और अपने उन श्रोताओं को जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक और सॉन्ग आप गाएंगी।
0: बिल्कुल, क्यों नहीं, सिंगिंग मेरा पैशन है।
1: तो चलिए फिर सुनते हैं आपसे एक और गीत।
0: ओके

0: बहुत ही खूबसूरत, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं क्या कहूँ, बहुत ही प्यारा। दरक्षा, हमें तो आपसे बात करके बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा?
1: मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं इतना इन्जॉय कर पाऊँगी। मैंने बहुत इन्जॉय किया।
0: तो दरक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
2: तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं लव स्टोरी सेगमेंट की ओर, और उसका सुनेंगे आज हम एपिसोड नंबर 6।
3: दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कैसे एक गलत फहमी ने तो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया, कैसे एक बंद होते दरवाजे ने तो जिंदगियों के रास्ते अलग कर दिए। लेकिन कुछ कहानियाँ जुदाई पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियाँ इंतजार में सांस लेती रहती हैं। आरिफ के जाने के कुछ महीने बाद माहिरा ने एक छोटी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा नूर, क्योंकि वो उसके अंधेरे में उतरने वाली पहली रोशनी थी। उस दिन माहिरा ने तय कर लिया कि अब वो टूटेगी नहीं, झुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। वो नूर की माँ भी बनेगी और बाप भी बनेगी। साल गुजरते गए, नूर बड़ी होती गई, माहिरा का कारोबार भी बढ़ता गया। उसने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया था, हर आंसू को अपनी मेहनत में बदल दिया। लेकिन एक दिन वही लड़की जो स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी देश की सबसे सफल महिलाओं में गिनी जाने लगी। लेकिन दोस्तों, दिल के कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहां वक्त का असर नहीं होता। माहिरा के दिल में एक कमरा आज भी आरिफ के नाम का था, बिल्कुल खाली, मगर बंद नहीं था। उधर आरिफ भी जी रहा था लेकिन अधूरा। 20 साल तक फिर एक दिन किस्मत ने दोनों के नाम फिर वही एक पन्ने पर लिख दिए। एक बिजनेस सम्मेलन था, हजारों लोगों की भीड़, और अचानक दो नजरें टकराई, वही आंखें, वही एहसास। बस वक्त की धूल उन पर जम गई थी। माहिरा, आरिफ की आवाज कांप रही थी। माहिरा, उसकी आंखों में पछतावे के 20 साल थे। मैं हार गया अपने घमंड से, अपने शक से, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से कभी नहीं जीत पाया। माहिरा की आंखें भर आईं, तभी एक लड़की वहां आई, अम्मी, नूर। उन दोनों की मोहब्बत थी सबसे खूबसूरत निशानी। जब आरिफ को पता चला कि वो उसकी बेटी है तो उसकी आंखों में बरसों का दर्द बह निकला। उस दिन किसी ने किसी से हिसाब नहीं मांगा, किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि मोहब्बत जब सचमुच लौटती है तो अपने साथ माफी भी ले आती है। और फिर एक शाम डूबते सूरज के सामने दो हाथ फिर से एक हुए। 20 साल पहले जो रिश्ता टूटा था वो फिर जुड़ गया, शायद पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ा है इस बार। और उस दिन माहिरा ने आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा, या अल्लाह, तेरी हर देर में एक हिकमत होती है। और सच ही तो है, कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाते नहीं, बस वक्त उन्हें थोड़ी देर के लिए हमसे दूर कर देता है, क्योंकि सच्ची मोहब्बतें खत्म नहीं होती।

0: दोस्तों, वो बस लौट आने में थोड़ा वक्त लेते हैं। इसी के साथ मुकम्मल होती है आरिफ और माहिरा की दास्तान।
1: तो दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467763। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त शिवानी और साथ ही मोनिका सैनी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 314.47 मीटर था 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 8 बजे होगा कार्यक्रम गीत संध्या और 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे 1942 लव स्टोरी फिल्म के गीत। ऋतुश्री शुक्ला के गाए भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और प्रमोद भैया क्या हो रहा है भाई?
1: भैया सब बहुत बढ़िया है, आप बताओ भैया सब ठीक ठाक तो?
0: देखो बाकी तो ठीक है, लेकिन इस समय जो खेती की अगर हम बात करें तो भैया हमारी धान की नर्सरी बिल्कुल तैयार सी हो गई।
1: ये तो अच्छी बात है भैया। देखो जब टाइम पर नर्सरी को लगा दिया तो
0: हाँ
1: भैया टाइम पर उसकी रोपाई भी हो जाएगी और फिर फसल भी बढ़िया होगी।
0: हाँ और भैया जहाँ तक बात यो है गन्ने की, तो गन्ने में भैया हमने देखो निराई गुड़ाई कर दी थी
1: अच्छा
0: और भैया उसमें जो है मिट्टी चढ़ाने का काम कर दिया।
1: अच्छा
0: अब तो
1: अच्छा
0: बस ये है कि बारिश जैसे हुई है तो बस आराम से बैठे हैं
1: हाँ, और अब तो भैया देखो धान की रोपाई करने के लिए खेतों की तैयारी चल रही होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो धान की रोपाई से पहले हमने जो भैया ढेंचा बोया था, सनई बोई थी, लोबिया बोया था,
1: जी
0: उसे जोत कर डाल दिया।
1: अच्छा
0: अभी मोटा मोटा डाला। अब भैया हम क्या करेंगे, एक आध दिन में उसमें भैया रोटावेटर घुमवा देंगे
1: बहुत बढ़िया
0: तो
1: बात है
0: जिससे वो
1: तो।
0: मिट्टी मिल जाएगा, और फिर जब कादल काटेंगे ना
1: हाँ
0: बस समझ लो बिल्कुल फर्स्ट क्लास गल जाएगा वो।
1: ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात है भैया। देखो अब धान की अच्छी फसल पैदा करनी तो यो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन एक बात और है, ये तो पारंपरिक खेती हम कर ही रहे हैं,
0: ठीक।
1: कभी पारंपरिक खेती से हटके भी भैया कुछ अलग तरह की खेती करने की सोची है कि ना तुमने?
0: भाई देखो हम एक अभी ना गए थे एक शादी में,
1: अच्छा जी।
0: तो वहाँ विभिन्न प्रकार के हमें यह फल देखे हमने, लेकिन भैया जब ड्रैगन फ्रूट खाया ना तो लोग टूट का पड़ रहे थे भैया उस पर। मैंने भैया इसमें क्या खास बात है, उन्हें बड़ा भारी पौष्टिक हो गए, तो उसकी मांग बहुत थी, ये महंगा भी बहुत है। तो हमने कहा भाई इससे बढ़िया क्या बात है।
1: उसकी खेती करनी चाहिए।
0: हाँ
1: तो भैया ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है ना भाई, देखो यो हम सब कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसके लिए बस जरा सी जानकारी हमारे पास में ये होनी चाहिए कि खेती करने के लिए हमें क्या-क्या काम करने पड़ेंगे।
0: भाई देखो मैंने कोशिश करी।

0: पता करने की।
1: अच्छा जी।
0: तो जब मैं गया उनसे, फल वालों से पूछा कि भाई कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका असली नाम क्या है,
1: हाँ।
0: तो भाई उन्होंने बताया कि ये एक स्वादिष्ट उष्ण कटिबंधीय फल है, जैसे भैया कहीं कहीं कमलम के में है, कहीं कहीं स्ट्रॉबेरी नाशपाती के नाम से जाना
1: जी जी
0: जाता
1: जी
0: है, और वैसे होता ही हो कि एक प्रकार का कैक्टस होता है, जैसे
1: हाँ
0: नागफनी हो ना
1: जी जी
0: इस
1: जी
0: तरह का रहा है,
1: उसी तरीके का रहे।
0: और इसकी कलम लगाई जाती।
1: हाँ, इसकी कलम लगाई जा और भैया कम पानी में पैदा हो जा। और एक चीज और है जो तभी अभी आप बातें कर रहे थे कि भैया यो हमारे शरीर के लिए बड़ा भारी लाभदायक रहे, क्योंकि भैया इसमें विटामिन बहुत हुए हैं, खनिज तत्व हुए हैं, एंटीऑक्सीडेंट हो, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा रह कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखो जहां तक इसके प्रकारों की बात है तो आम तौर पर ये तीन प्रकार का होता है, एक सफेद गुद्दे वाला, एक लाल गुद्दे वाला और एक पीले गुद्दे वाला। तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे यहाँ जो प्रचलन में है ना, तो भैया वो जो है जिसका छिलका गुलाबी और लाल में मिक्स होता है, उस वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं। और
1: बिल्कुल
0: इसमें भैया छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं
1: जी।
0: जो बहुत मतलब खाने में भी अच्छा लगता है, लाल गुद्दे वाला होता है,
1: हाँ
0: तो जिसका छिलका अंदर का जो है दोनों लाल और बैंगनी होते हैं,
1: सही बात कही
0: और
1: भैया।
0: तीसरा हो भैया पीले गुद्दे वाला। तो ये तीनों प्रकार के जो हैं, इनमें से कोई सा एक लगा लिया जाए तो भैया मैं तो थोड़ा सा मांग के
1: हाँ,
0: ऐसे पौध लाया था,
1: अरे वाह, मतलब भैया आपने इसकी एक कलम लगा ली,
0: मैंने भैया 15 पौधे लगाए जगह
1: बहुत
0: जगह।
1: बढ़िया बात है। अब देखो भैया, आपने तो लगा ली, अब यो कैसी मिट्टी में होगा यो भी हमें पता होना चाहिए।
0: हाँ, तो कैसी में होगा बताओ।
1: भैया देखो, इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी जो है वो अच्छी रह करे।
0: बिल्कुल
1: और भाई ध्यान यो रहना चाहिए कि खेत में या जहां भी हम इसको लगा रहे हैं वहां जल भराव नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया पौधे की जो जड़ है वो गल सके।
0: हाँ बिल्कुल, देखो भैया डॉक्टर्स ही बताते हैं कि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता,
1: जी
0: और भैया इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक बात ये कि इसमें पाचन शक्ति बहुत मजबूत करने की ताकत होती है, क्योंकि इसमें उच्च फाइबर होता है और जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स होती हैं और आंत आदि के, इनको स्वास्थ्य को इनके सुधारने में मदद करता है।
1: अच्छा
0: साथ साथ ये भैया हृदय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है,
1: अच्छा जी।
0: इसमें जो है जो इसके बीज होना अंदर काले
1: हाँ
0: काले से,
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते
1: ये तो
0: हैं
1: बड़ी अच्छी जानकारी तुमने दी,
0: करते
1: ये तो
0: हैं।
1: बड़ी अच्छी जानकारी तुमने दी भैया। और देखो, जो किसान भाई इसको लगाने की सोच रहे हैं,
0: हाँ
1: हम उन्हें यो कहना चाहेंगे कि भाई इसकी जो कलम है वो 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगानी चाहिए, और भैया वो कलम लगा के उसे एक सहारे की जरूरत हो करे, चाहे तो भैया वो सीमेंट का खंबा हो या कोई और कंक्रीट का खंबा हो या कैसा भी कोई हो,
0: हाँ
1: भाई उसका सहारा अगर हम इसे देंगे तो इसकी खेती हम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से।
0: भाई, बात यह है हमने तो भैया प्लास्टिक के पाइप लगाए
1: अच्छा।
0: तो वो एक तो गलने की उसकी कम स्थिति रहती, और भाई सस्ता मिल जा, आसानी से मिल जा,
1: जी
0: तो अगर हमारे किसान भाई इस तरह से करेंगे तो वो ड्रैगन फ्रूट की जो है बढ़िया खेती कर सकते
1: और
0: हैं।
1: भैया 1 से 1.5 साल में फल लग जाए इसके ऊपर।
0: हाँ ये बहुत अच्छी बात की। तो भाई बात यह है हमारे किसान भाई भी अगर भैया इसकी खेती करना चाहते हैं
1: जी
0: तो सामान्य सी जानकारी आप प्राप्त करके कर सकते हैं। अब भाई कहो तो कुछ सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
1: भैया, संदेश तो सुनेंगे लेकिन किसान भाइयों को यूँ बता दें कि आज है शनिवार, और भैया आज हम अपने किसान भाई और बहनों को लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी सुनवाएंगे। तो भैया नंबर भी बता दें उन्हें।
0: भाई पहला ये बता दें किसान भाइयों को, अगर आप अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं तो भैया हमें अब से लेकर और भैया 6:45 तक
1: जी
0: फ़ोन करके अपनी पसंद की रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं।
1: जी जी जी
0: और भैया हमें फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर नोट कर लो।
1: बिल्कुल, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। और भाई हमारा दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5।
0: तो भैया इससे पहले आप फोन करें, पहले सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700001।

0: 8742
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
5: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
4: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
5: खुशहाली का नया प्रयोग।
6: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
7: तो किसान भाइयों ने भाई जरूरी संदेश सुने भाई। अब देखो हम एक बार फिर बता देते हैं, अगर आप अपनी पसंदी कोई रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं तो भैया आप हमें सीधे फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए फोन नंबर एक बार बता दो भैया।
5: हमारे नंबर है 94-570-78-288 और दूसरा नंबर है 01341-230-105। और गंगाराम भैया देखो नंबर हमने बता दिए भाई, क्यों ना अब शुरू किया जाए आज का लोकगीत और रागनियों का फरमाइशी सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो लोक मंजरी।

0: तो भाई लोकगीतों और रागनियों के सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंदिरी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भाई प्रमोद सिंह
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। और भाई हम बात कर रहे थे कि अगर आपको अपनी पसंद की रागनी या लोकगीत सुननी है तो भैया हमें सीधे फोन कर सकते हैं। एक बार भैया फोन नंबर और बता दो।
0: बिल्कुल। हमारे नंबर हैं 94-570-78-288। और भैया हमारा जो दूसरा लैंडलाइन का नंबर है वो है 01-341-230-105।
1: तो भैया एक और साथी हमारे फोन लाइन पे हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो
2: हाँ जी,
1: हेलो लोक मंजरी।
2: हाँ जी, हेलो लोग मंजरी।
1: हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: मैं ग्राम का दौना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: जी
0: मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ जी। मैं और आलोक कुमार गंगाराम और भाई प्रमोद सिंह को मेरी राम राम।
0: राम राम जी, राम राम, हमारी भी राम राम
1: तो
0: आपको।
1: अब बताइए कौन सी रागनी आज आपको सुनवा दें।
2: अगर नहीं है कोई तो आप सत्यवान सावित्री की कोई भी राग नहीं सुनवा दें।
0: नहीं,
1: नहीं,
0: रागनियां
1: आप अपनी
0: हैं।
1: पसंद की बताइए कौन सी सुनना चाह रहे हैं।
2: आप सत्यवान सावित्री की सुनवा दें कोई।
1: अच्छा, सत्यवान सावित्री के किस्से से।
0: जी,
1: हाँ जी,
0: बिल्कुल, हम आपको
1: सावित्री
0: सत्यवान सावित्री के किस्से
1: सावित्री
0: की
1: की।
0: रागनी जरूर सुनवाएंगे। बताइए, आपने धान की रोपाई की कि नहीं की?
2: जी रोपाई नहीं की जी, अभी नर्सरी लगा रखी है। हाँ
0: अच्छा जी, तो
2: जी, अभी 5-7 दिन लग जाएंगे।
0: अच्छा, बारिश तो हो रही है ना? थोड़ी बहुत बारिश तो हुई होगी।
2: थोड़ी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी परसों।
0: अच्छा जी, अच्छा, तो फिर खेत की
2: हाँ
0: तैयारी
2: जी,
0: करने के लिए क्या ध्यान रखा जा रहा है इस समय?
2: ध्यान रखा जा रहा है जी, जुताई कर रहे हैं
0: हाँ
2: और
0: हाँ हाँ
2: तैयारी कर रहे हैं जी।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप अपने खेतों में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करने के बाद, खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करने के बाद, जब रोपाई करेंगे तो अच्छी फसल आपको मिलेगी, तो अच्छा रहेगा। तो
2: जी,
1: आपको
2: मैं
1: सुनवाते
2: दो चार
1: हैं।
2: नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: जी
2: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, स्वागत है।
2: एक तो आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान,
1: जी साहब,
2: आसिफ चौधरी।

0: भैया देखो, ये रागनी भाइयों ने सुनी सेठपाल आर्य और साथी की आवाज में, और भाई लगातार फोन हमारे पास में आ रहे हैं क्योंकि किसान भाई सुन रहे हैं लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी।
1: तो भैया आपको बता दें कि अगर आप भी अपनी पसंद की कोई रागनी या लोकगीत सुनना चाहते हैं तो

0: कदर न जानी ओ राजा तुमने। तो भैया आपने अभी ये लोकगीत सुना बिना सिंह की आवाज़ में। और भाई अब एक और साथी हमारे फोन लाइन पे, देखते कौन भैया हैं।
1: हेलो,
2: हेलो लोकमंजरी।
0: हाँ जी हेलो
1: जी
0: लोकमंजरी, कौन भैया बोल रहे हैं? अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: दादा नमस्ते जी। नमस्ते
0: नमस्ते
1: नमस्ते
0: जी।
1: जी,
2: जी मैं उत्तराखंड से निकाल से निगाह फील्ड से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ जी। मैं दादा
1: जी प्रकाश चंद जी कैसे हैं इस समय? सब ठीक ठाक हैं?
2: सब बढ़िया ही दादा, सब बढ़िया है। आप सुनाओ समस्त आप सब बढ़िया
1: सब
2: आकाशवाणी में।
1: बहुत अच्छे हैं। बारिश कैसी हो रही है आपके यहाँ?
2: वैसा बारिश तो आज हुई नहीं,
1: अच्छा,
2: आज नहीं हुई बारिश क्योंकि मौसम फिर आप सूखापन आ गया, फिर बारिश नहीं हो रही है।
1: नहीं, देखिए मौसम तो देखिए अपने हिसाब से चलता है, ये प्रकृति है और प्रकृति के साथ में हमें चलना पड़ता है।
0: तो प्रकाश जी आज क्या सुनेंगे आप?
2: भाई साहब मैं वो हरी भरी तरकारी ले लो, वो सुनूंगा उस हरियाणी लोकगीत को।
1: प्रकाश जी एक बात हम आपसे आज जानना चाहेंगे, आप इस लोकगीत को हमेशा सुनते हैं, इस गीत में आपको क्या अच्छा लगता है?
2: वैसा मुझे ये अच्छा लगता है कि इधर हरी माता जो ये हरी ताजी सब्जी ले जाते हैं ना लोग यहाँ से
1: जी
2: घर से मतलब दुकानों में तो वैसी सब्जी रहती है थोड़ा एक दो दिन की, लेकिन जो घर की सब्जी रहती है लोग ताजी ताजी सब्जी ले जाते हैं, तो वैसा मुझे बड़ी खुशी होती है और उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है।
1: बहुत अच्छी बात,
0: तो
1: बहुत
0: आपको
1: अच्छी बात।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये लोकगीत।
1: ठीक है जी।
2: भाषा परिवार का दो तीन नाम ले लो।
3: हरी

0: कारी ली थी की आवाज में। और भाई हम अपने किसान भाइयों को एक बार फिर से नंबर बता देते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। नंबर है 94-570-78-288।
1: तो भैया इसमें से आप जो है देखिए, एक नंबर और है हमारा 013-41-230-105, इनमें से किसी एक नंबर पर भी फ़ोन करके अब से लेके और 7:45 तक आप हमसे अपनी पसंद की रागनी लोगे सुन सकते हैं।

0: थोड़े दुख घने जगत में, भैया महनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में प्यारी सी रागनी आपने सुनी,
1: जी भैया।
0: और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों की भैया इससे जिज्ञासा पूरी हुई होगी।
1: बिल्कुल, और देखो भैया हमारे पास में लगातार फोन आ रहे हैं, देखते हैं कौन भाई हैं।
0: हेलो।
2: हाँ जी, हेलो।
0: हाँ जी, हेलो लोकमंजरी जी, कौन भैया बोल रहे हैं, अपने नाम बता दीजिए।
2: नाम था सुरेश चंद विश्वकर्मा है
0: जी।
2: ये कोठी खिदमत तो पड़ता है अमरोहा जिले में।
1: जी जी
0: अच्छा
1: जी
0: अच्छा अच्छा
1: सुरेश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये कार्यक्रम कैसा लगता है आपको, और ये बता दीजिए कि आपको क्या सुनना है आज।
2: तो महाभारत की रागनी सुनवा दी कोई सी भी
0: ठीक है।
2: कार्यक्रम तो नदियों बात के अलावा सुनते ही नाम तो रेडियो में चल रहा है।
0: ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा,
2: तो एक
0: महाभारत
2: है
0: की।
2: दुकान पे ट्रैक्टर काम करते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, ये महाभारत की रागनी क्यों पसंद है आपको, कोई खास वजह है क्या?
2: महाभारत की रागनी में जरा वो गायक अच्छे हैं, कुछ बढ़िया आवाज निकलती है।
1: अच्छा
0: अच्छा
1: अच्छा
0: अच्छा तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की रागनी है।

0: तो किसान भाइयों ने भाई मैनपाल सिंह और साथियों की आवाज़ में प्यारी सी रागनी सुनी, और भाई मुझे तो बढ़िया बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी?
1: हाँ भैया, देखो महाभारत के किस्से की रागनी सुभाष चंद्र और साथी की आवाज़ में भाइयों ने सुनी, रागनी बहुत अच्छी लगी। और भाई हम तो एक ही बात कहेंगे कि अगर किसान भाई इस कार्यक्रम में अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत सुनना चाहते हैं तो अब प्रत्येक शनिवार को सुन सकते हैं अपनी पसंद की रागनी और लोकगीत हमारे पास में फोन करके।
0: बिल्कुल, देखो भैया निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखो आज तो कुछ ही हमारे किसान भाइयों के फ़ोन लगे होंगे, लेकिन बाकी और साथी सोच रहे होंगे भाई हमारी पसंद की रागनी सुनवाई जाए या लोकगीत सुनवाया जाए। तो अगले शनिवार को फिर भैया कार्यक्रम होगा, और इसके लिए फ़ोन नंबर एक बार और हम आपको बता देते हैं।
1: बिल्कुल भाई, हमारे नंबर हैं 01341230105। और दूसरा नंबर कौन सा है भैया?
0: भैया 01341, पहले कोड लगाओ नजीबाबाद का, और उसके बाद 230-105 फ़ोन नंबर है।
1: जी। और भैया हमारा जो मोबाइल का नंबर है वो भी तो बता दीजिए।
0: 9457-07-82-88।
1: बिल्कुल, तो भैया ये था हमारा आज का लोकगीतों और रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो
1: हेलो लोक
0: लोक मंजरी।
1: मंजरी।

0: तो हमारे किसान भाइयों ने भैया अभी कार्यक्रम सुना हेलो लोक मंजरी, और अब चलते चलते कुछ किसान भाइयों को यह दो टूक बात बता देते हैं।
1: बिल्कुल, दो टूक तो बतानी ही पड़ती है भाई। देखो, दो टूक बात यू है, तुमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया कि ना?
0: भाई देखो, बात यह है कि ज़्यादा बातें करने का तो टाइम नहीं है कि हमारे किसान भाई के अब के जो इलेक्ट्रॉनिक केसीसी वो बना सकते हैं, जिसे ई केसीसी कहते हैं।
1: बिल्कुल। और देखो भैया, इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और ऑनलाइन इसके लिए आवेदन हो जाता है, बैंकों के ज्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ते।
0: बिल्कुल, बात यह है कि भैया कम समय में और आसानी से ऋण प्राप्त करने का एक जो साधन है, इसमें जो आपकी भूमि का सत्यापन है और जो पात्रता की जांच है वो डिजिटल माध्यम से कुछ ही समय में हो जाती है।
1: बिल्कुल, तो किसान भाई अब ई केसीसी बनवा सकते हैं। डिजिटल युग है तो भैया, डिजिटल युग में हमें भी डिजिटल बनना ही पड़ेगा।
0: बिल्कुल, और भैया इसके माध्यम से देखो बहुत ही कम ब्याज है, तो कम ब्याज पर हमारे किसान भाई ऋण उपलब्ध करा सकते हैं और उसकी अपनी जो खेती किसानी की जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसको पूरा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखो भैया, ई केसीसी की बात चलते चलते दो टूक हमने कर ही ली है
0: हाँ।
1: और

0: हमारा आज का कार्यक्रम किसान भाइयों को कैसा लगा ये वो हमें चिट्ठी में लिखकर बताएंगे भाई। पता हम बता देते हैं उनको।
1: बिल्कुल बता दीजिए भैया, बता।
0: हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन 2467।
1: बिल्कुल। तो भैया इस पते पे हम आपके पत्रों का जवाब देने का इंतज़ार रहेगा। और भैया इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से।
0: साथ ही भैया आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 94-570-78-288 नंबर पर।
1: तो भैया अब देखो समय ज़्यादा बातें करने का नहीं रहा, तो अब चलते चलते अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
0: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये पूर्व प्रसारित वार्ता, जिसका विषय है भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प।
1: भीष्म साहनी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ था तथा मृत्यु 2003 में दिल्ली में। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा विभाजन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न कार्य किए जिससे उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी विकास मिला। वे शिक्षक, पत्रकार, नाट्यकर्मी, अभिनेता, अनुवादक, कथाकार, नाटककार आदि रहे। अपने शुरुआती दिनों में भीष्म साहनी मुख्य रूप से कथाकार के रूप में स्थापित हुए और लंबे समय तक इसी विधा से जुड़े रहे। कथाकार से नाटककार की भूमिका में वे संयोगवश या अचानक से नहीं आए, बल्कि इससे पूर्व रंगमंच की एक लंबी फेहरिस्त है जिसे पूरा करते हुए वे यहाँ तक पहुँचे। हालांकि बतौर नाटककार उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक हानूश अपने जीवन के 62वें वर्ष में लिखा और तत्पश्चात नियमित अंतराल पर नाटक लिखते रहे। उनके नाट्य जीवन की अगर बात करें तो वे दिल्ली में रहते हुए जननाट्य मंच के नुक्कड़ नाटकों और बाद में सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। बंगाल अकाल के दिनों में रावलपिंडी में हुए इप्टा के नाट्य प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि जिंदगी भर किसी न किसी रूप में इप्टा से जुड़े रहे। कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वाइस चेयरमैन के रूप में उनकी रंग गतिविधियों में अर्थपूर्ण रचनात्मक भूमिका का निर्वाह भी किया। यही नहीं, टीवी के विभिन्न नाटकों, सीरियलों के साथ साथ कुछ एक श्रेष्ठ फिल्मों में अभिनय भी किया। इससे पूर्व की अगर बात करें तो अपने कॉलेज के दिनों में भीष्म साहनी ने आर्नल्ड रिडले के नाटक द घोस्ट ट्रेन का भूतगाड़ी नाम से अनुवाद करके रावलपिंडी के डीएवी कॉलेज में इसका निर्देशन व मंचन किया। इन सभी स्थितियों का भीष्म साहनी के नाट्य लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाभाविक यथार्थपूर्ण चरित्रों की जीवंत सृष्टि, मार्मिक क्षणों की सूक्ष्म पकड़, सहज नाटकीय प्रसंगों की अद्भुत समझ, गहन विडंबनापूर्ण स्थितियों की अचूक पहचान, रोचक एवं कुतूहलपूर्ण घटनाक्रम की कुशल योजना और तनावपूर्ण मनःस्थितियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की तार्किक शक्ति जैसी नाट्य लेखन की समझ भीष्म साहनी में सदैव से मौजूद थी, जो संभवतः उनके जीवन के बहुरंगी दृश्यों से उन्हें प्राप्त हुई। उनके नाट्य लेखन पर उनके बड़े भाई अभिनेता

बलराज साहनी का भी काफी प्रभाव रहा। दोनों भाइयों ने कई नाटकों में एक साथ अभिनय भी किया। हालांकि उनके पहले नाटक हानूश पर बलराज साहनी की निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली, जिससे वे निराश नहीं हुए बल्कि और उत्साहित और परिमार्जित होकर नाट्य विधा में अवतरित हुए। व्यक्ति के तौर पर भीष्म साहनी शांत, कोमल, सरल और लगभग साधारण स्वभाव के मितभाषी व मृदुभाषी इंसान थे, परंतु सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर वह पूरी तरह अपनी आस्था तथा विश्वास के प्रति सुदृढ़, ईमानदार, अटूट और संघर्ष धर्मी व्यक्ति थे। मानववाद में उनकी गहरी आस्था थी। न्याय, भाईचारा, समानता और सामान्य जन की सामूहिक संघर्ष शक्ति में उनका गहरा विश्वास था। दलित, दमित, शोषित और स्त्री के प्रति उनके मन में सदैव सहानुभूति थी। साथ ही कारीगर, खिलाड़ी, कलाकार या कहें हुनरमंद के लिए उनके मन में गहरी आस्था थी। व्यक्तित्व के इन सभी विशेषताओं का उनके नाटकों पर भी विस्तृत प्रभाव पड़ा, जो उनके सभी नाटकों में परिलक्षित होता है। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटकों की अगर बात करें तो उनमें हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, राजदर्शन, कब्र और संजीवनी का नाम लिया जा सकता है। और उनके नाटकों के प्रमुख विषयों में भारत का विभाजन और उसकी त्रासदी, सांप्रदायिक तनाव, गरीबी, अन्याय और शोषण, सामाजिक संघर्ष और बदलाव, मानववाद, नैतिक द्वंद्व, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा आदि प्रमुख रहे हैं। हिंदी साहित्य में जब भी समाज सापेक्ष नाट्य शिल्प की बात होती है तो भीष्म साहनी का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। भीष्म साहनी अपने समय के हिंदी नाट्य साहित्य के प्रमुख साहित्यकार ही नहीं बल्कि नाट्य शिल्प के लिहाज से सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। उनके नाटकों का मूल स्वर सामाजिक यथार्थ, मानवीय करुणा, वैचारिक प्रतिबद्धता और परिवर्तन की उत्कंठा है, जो उनके समृद्ध शिल्प व्यवस्था में परिपाक होकर प्रस्तुत हुए हैं। उनके नाटक कलात्मक और तकनीकी व्यवस्था से परिपूर्ण हैं, जिससे उसकी रचनात्मकता, प्रस्तुति और अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। किसी भी नाटक का शिल्प उसको चिरजीवी बनाता है। संरचना, संवाद योजना, पात्र विन्यास, मंच व्यवस्था, दृश्य परिवर्तन, प्रकाश योजना, संगीत, अभिनय शैली आदि तत्व मिलकर नाटक को आकार देते हैं और उसके स्वरूप को निखारते हैं। इन सभी शिल्पगत वैशिष्ट्य के साथ भीष्म साहनी अपनी समृद्ध वैचारिकी के साथ अपने नाटकों में अवतरित होते हैं। उनकी नाट्य दृष्टि केवल रंगमंचीय प्रयोग या सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वह समाज के यथार्थ और संघर्ष के धरातल से भी जुड़ा है। नाट्य शिल्प वह आधार है जिस पर नाट्य दृष्टि निर्मित होती है और नाटक का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। इस क्रम में भीष्म साहनी के सभी नाटक पूर्णतः परिपक्व दिखाई देते हैं। उनके नाटकों के कथानक, संवाद योजना, चरित्र निर्माण, दृश्य योजना, मंचीय निर्देश, प्रकाश

0: उसके वैशिष्ट की अगर बात करें तो वे उस दौर के अधिकतर नाटककारों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। भाषा शिल्प और वैचारिक शिल्प दोनों स्थितियां उनके लेखन के मजबूत पक्ष रहे। वैचारिक शिल्प के लिहाज से भीष्म साहनी के नाटकों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनका सामाजिक यथार्थ के प्रति गहरा लगाव। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, शोषण, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दमन और संवेदनहीनता को अपने नाटकों में प्रभावी ढंग से चित्रित किया। मुआवजा, कबीरा खड़ा बाजार में जैसे नाटकों में मजदूर वर्ग, गरीब किसान, स्त्रियां और आम जनता की व्यथा अत्यंत यथार्थ परक ढंग से उभारा है। भीष्म साहनी का नाट्य साहित्य सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा से ओतप्रोत है। उन्होंने जनवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज में शोषक और शोषित वर्गों के बीच टकराव, आर्थिक असमानता और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता दी। साथ ही इतिहास और मिथकीय कथाओं को समकालीनता के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया। कबीरा खड़ा बाजार में उन्होंने कबीर जैसे ऐतिहासिक पात्र को आधुनिक समाज के संदर्भ में प्रस्तुत कर धार्मिक पाखंड, सांप्रदायिकता और सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। इसी प्रकार आलमगीर नाटक में औरंगजेब और दारा शिकोह के संघर्ष के माध्यम से राजनीतिक सत्ता, धार्मिक कट्टरता और भाईचारे के विघटन को उन्होंने बखूबी उजागर किया। उनकी नाट्य शैली में यथार्थ, संघर्ष, वैचारिकता, संवाद प्रधानता, लोकधर्मिता और प्रतीकात्मकता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह से पूर्व प्रसारित वार्ता। विषय था भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत।

तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को। गीत के बोलते हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का था। और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल के हैं बोल। आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम तवायफ।

0: तुमने।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तलाश फिल्म का एक गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के लिए धुन तैयार की थी एसडी बर्मन ने। इसी के साथ कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है।

हम अपने श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल रात 9:30 पर और कल रात 10 होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम गीत संध्या और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म होगी 1942 अ लव स्टोरी। ऋतुश्री शुक्ला के गाए भजन आप सुन सकते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:32 पर। कल सवेरे 9:20 पर धरती गाती है कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शिवानी कर्माकर के गाए रुहेल खंडी लोकगीत। श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुन सकते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला में दोपहर 12:05 पर और 12:30 पर फिल्मी संडे कार्यक्रम के अंतर्गत कल की फिल्म होगी हीर रांझा। कल दोपहर 2:30 पर होगा कार्यक्रम एक और अनेक। विविध कलाकारों के गाए हिमाचली लोकगीत होंगे। दोपहर 1:45 पर कार्यक्रम होगा लोकधारा। बच्चे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बालवाटिका सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। कल शाम 6:45 पर विविध कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रक्तदान दिवस पर विशेष वार्ता। वार्ताकार होंगे शशि सैनी और वार्ता होगी रक्तदान महादान, आपका रक्त किसी को जीवन दे सकता है। श्रोताओं ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। आकाशवाणी का ये निजी प्रभात केंद्र। शाम के 7:18 हुए हैं। थोड़ी देर बाद आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा। दुनिया त्रस्त है, लेकिन नए भारत ने वैश्विक संकट में भी ऊर्जा संकट से देश को बचाया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का दर्शन कर रही है।
1: आज हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है। हम सब गौरवशाली है, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है, जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने एक क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
1: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 2 दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों से नवाचार व अनुसंधान को राष्ट्र निर्माण तथा जन कल्याण से जोड़ने का आह्वान किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 7 मंजिला इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएचयू प्रशासन के अधिकारियों को भी परियोजना की नियमित निगरानी करने और निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बुजुर्गों को समर्पित यह अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग देश का तीसरा तथा उत्तर भारत का प्रमुख वृद्धावस्था चिकित्सा केंद्र होगा। केंद्र में बुजुर्गों के लिए मल्टी स्पेशलिटी जेरियाट्रिक वृद्धावस्था चिकित्सा ओपीडी संचालित की जाएगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने

0: वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सभी जनपदों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जनकल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री केपी मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जनकल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है और पक्षपात के तहत नहीं, निष्पक्षता के साथ ही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र के गांव धौलाकुआं के पास आज हुए एक सड़क हादसे में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जनपदों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं कल से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कर रहा है नए भारत का दर्शन। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन को किया संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में

0: स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जनपदों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ऋतुश्री शुक्ला के गाए भजन।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे ऋतुश्री शुक्ला के गाए ये पूर्व प्रसारित भजन। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीब आपात केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत संध्या।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में श्रोताओं, अभी आपने सुना उजाला फिल्म का ये गीत। गीत के बोलते हसरत जयपुरी की और संगीत था शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम गीत संध्या का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म चोर पे मोर से। गीत के बोल हैं गुलशन बावरा के और संगीत आर डी परमन का।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या, और कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज किशोर कुमार की है और फिल्म का नाम कटी पतंग।

0: मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाज़ फिल्म का नाम था साथी और इस गीत को संगीत दिया था नौशाद ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है, फिल्म का नाम है सच्चा झूठा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत के बोल हैं इंदिवर की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

कार्यक्रम के अंत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

इसी के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आइए अब सुनते हैं 1942 लव स्टोरी के गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के गीत। आवाजें थी कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की, गीत थे जावेद अख्तर के और संगीत था आरडी परमन का। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान

0: पांच दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देश

0: की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया, अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत

0: संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीलों के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9.

0: गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अलावामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकत दारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बरेआजम का ये उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकत दारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मेखवा के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकत दारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओज और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर में अख़वा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तिजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कानात हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकत दारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज के लिए शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ब्रिटिस्लावा में भारतीय बिरादरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया के पहले दौरे के लिए उनके मखसूस और मुनफरिद खैर मकदम की खातिर तैयारी कर रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: अब जब स्लोवाकिया पहली मर्तबा किसी भारतीय वजीर आजम की मेजबानी के लिए तैयारियों में मसरूफ है, भारतीय बिरादरी के अफराद उनका शानदार खैर मकदम करने के लिए मखसूस तैयारियां कर रहे हैं। पेंटिंग, सकाफती पेशकश और रक्स के प्रोग्राम इस तारीखी दौरे के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं। स्लोवाकिया में भारत के सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय बिरादरी अफराद के माबेन तजस्सुत नुमाया तौर पर नजर आता है। बिरादरी में तैयारियां जारी हैं और राजधानी के शहर ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के कौमी परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले 5 साल के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सफर और तबादलों में नुमाया इजाफे की वजह से जोश व खरोश में इजाफा हुआ है। वस्ती यूरोप में ब्रातिस्लावा का जाय मकाम भारत के साथ सियाहती रवाबित को मुस्तहकम करने में भी मदद कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा तवक्को है कि अवाम से अवाम के ताल्लुकात में नई तहरीक पैदा करेगा और भारत और स्लोवाक जमहूरिया के दरमियान सियाहत और बाहमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। ब्रिसिल्वा से आकाशवाणी के लिए सिमिति पुलुरिथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा आज सुबह मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जां बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है। भारतीय फिजाइया ने जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी 5 अग्निवीरों की हलाकत पर दुख का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क के लिए उनकी शुजात और खिदमात को फख्र और विकार के साथ हमेशा याद रखा जाएगा। जनाब सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मुल्क उनके साथ है।

0: उजागर किया गया। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी की नुमाइंदगी करते हैं और आलमी ज़रई पैदावार में इनका हिस्सा तकरीबन 42% है। उन्होंने कहा कि इन दो आलामियां सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि ब्रिक्स मुल्कों के मुश्तरक अज़्म और इज्तिमाई जिम्मेदारी का मजहर है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 नए इदाराजाती इकदाम का ऐलान किया गया। पहले इकदाम के तहत कुदरती और पायदार काश्तकारी पर मुश्तरक तहकीक के लिए महारत के मराकज का नेटवर्क कायम किया जाएगा जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कलीदी रोल अदा करेगा। दूसरे इकदाम के तहत मस्नूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी को काश्तकारी में मुतारफ कराने के लिए ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क कायम करना शामिल है जिसमें IIT दिल्ली तआवुन करेगा। तीसरे इकदाम के तहत बीजों से मुतालिक किसानों के हकूक के तहफ्फुज़ और बीजों के रिवायती अकसाम के तहफ्फुज़ के लिए एक आलमी फोरम कायम किया जाएगा। चौथे इकदाम के तहत रुकन ममालिक के दरमियान ज़रई मालूमात और जीनियाती वसाइल के इश्तराक की खातिर ब्रिक्स एग्री एंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
1: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल के दौरान मुल्क भर में तालीम, हुनरमंदी, इख्तरा और स्टार्टअप्स की एक नए कल्चर को फरोग दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम मोदी की मुख्तलिफ पॉलिसियों के नतीजे में भारत आज दुनिया भर में आला तालीम का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला मुल्क बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में मस्नूई जहानत की सलाहियत वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कायम हो चुके हैं जिसके बायस भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बनकर उभरा है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में मुल्क ने हुनरमंदी के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की का मुशाहदा किया है और 6 करोड़ से ज्यादा नौजवानों को मुख्तलिफ महारतों की तरबियत फराहम की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत का एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का सफर इसके खेत खलियानों और गांवों से होकर गुजरता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पायदार ज़राअत, इख्तराअत और तहकीक विकसित भारत की असास हैं। जनाब बिरला ने यह बात विकसित भारत एट 2047 के लिए पायदार ज़राअत, रिवायत टेक्नोलॉजी और ठोस नतायज के मौजू पर नई दिल्ली में 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब के दौरान कही। सड़क, नकलो हमल और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि उनकी वजारत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ रोजगार वजा करने पर जोर दे रही है। जनाब गडकरी नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी हुकूमत की क्यादत में पिछले 12 सालों के दौरान हासिल कामयाबियों और तरक्याती इकदाम को उजागर किया। जनाब गडकरी ने बताया कि सड़क, नकलो हमल और शाहराहों की वजारत ने मुल्क भर में ड्राइविंग के लिए तरबियती मराकज कायम करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक इन मराकज से तकरीबन 10 लाख अफराद तरबियत हासिल कर चुके हैं। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रूनमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम भारत की सकाफती रिवायत का जश्न मनाने और इसे फरोग देने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत के सकाफती सफर में नुमाया तरक्की हुई है। हुकूमत ने कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर मुतअद्दिद इकदाम किए हैं। इन इकदाम ने अवाम में मुल्क के सकाफती विरसे के हवाले से फख्र और वाबस्तगी के जज्बे को मजबूत किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तामीर, महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की असर नौ तामीर और तरक्की, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर मोदी हुकूमत की नुमाया कामयाबियां हैं। म्यूजियम ग्रांट स्कीम के तहत मुल्क के सकाफती ढांचे को मजबूत बनाया गया है। इस स्कीम के जरिए 21 नए अजायब घर कायम किए गए हैं जबकि 23

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेज

0: सोचना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मानसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुक कर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है। इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है। एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं, चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक।
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
2: 5,000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है,

0: कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की ये यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में दुनिया में कई स्थानों पे धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए मायने सामान्य, बी मायने उससे और कठिन, सी मायने और कठिन, डी मायने उससे भी कठिन और ई मायने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की। और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर

0: और उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, इस वक्त ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की, और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा, तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ, 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है

तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे DU म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे IIT कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही 4-5 जगहें हैं जहाँ पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया
2: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट ओरिजिनल।

0: को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब. अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूज़िक फ्री में सुनना है. हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने. 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है. ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक. पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं.
1: तो अभी आप लोगों ने
0: एक
1: क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र
0: जी
1: आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं,
1: रादर देन योर ओन कॉम्पोजिशन?
0: बिल्कुल हैं. पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज़ को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव इट,
1: जैसे अभी
0: यू नो.
1: आपने एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया
0: जी,
1: टच दिया।
0: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayan ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hai. Aur maine do line likhi thi, kaikei ka prasang, ki kaikei ke karan Ram van gaye, aur isi karan wo Ram ban bhi gaye.

0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े ही विस्तार से बताया।
1: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
2: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमने धारण किया है। और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
3: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanagas.
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद माननीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
3: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू राम एंड लक्ष्मण फ्रॉम दैट राक्षसी बावन द हैंड गोज इनटू अ ब्यूटीफुल पल्लवा।

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल सिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए

ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू वेंकट राव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित

0: जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसध्वनि। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नु वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्यागराजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कानड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा, इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कानड़ा। यू शिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Ridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashwani.
2: Saath mein Ratna Pandey. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे।